दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं क्यों उसका भला करूं, पर जो उसने किया वो उसके कर्म है। हम किसी के बारे में गलत सोचकर अपने कर्म क्यों खराब करें? आइए सुनते हैं घर संसार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के

ऐप, न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हमें ना आगे का पता है और ना पीछे का, यानी ना भूतकाल का और ना ही भविष्य का। हमारे पास जो भी पल हैं वो आज ही हैं, तो उस आज को क्यों ना बढ़िया से जिया जाए। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, आपके पास जो पल है उसी का ही आनंद लीजिए और अब हमें भी भोर सुहानी कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, मुझे यानी अर्चना को, और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Marking a new chapter in Indian cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The president will also honour the veteran actor Anant Nag and Dada Saheb Phalke Award for 2024. A report from our correspondent.
2: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film. The Best Actor honor is shared by Mamuti for Brahmyugam and Karthik Aryan for Chandu Champion. Rajkumar Periyasamy earned the Best Direction for Amran, while Kalki 2898ED was named Best Popular Film providing wholesome entertainment. Randeep Hooda won the Best Debut Director for Swatantra Veer Savarkar. In the non-feature category, the Marathi film Bhang

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का
3: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
4: Hello and a very warm good morning to all our listeners of Akashvani as we bring to you the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Mera naam hai Sakshi Mandwal dosto, aur aaj ke din ki shuruaat mein bahut sare events humne dekhe hain aur dekhne ko bhi hame mile. Sabse pehle agar baat karte hain to kabaddi mein bhartiya team ka jo pradarshan abhi tak raha hai wo bahut hi dominating raha aaj in the men's group A, jahan par humne South कोरिया को 63-31 से हराकर एक बहुत कन्विंसिंग जीत के साथ आज के दिन की शुरुआत करी। उम्मीद भारतीय कबड्डी के खिलाड़ियों से यही रहती है कि हमारा, क्योंकि इस खेल के अंदर हमेशा ही दबदबा बना रहा है, हम इसी तरह से जीत हासिल करें। मूविंग ऑन टू सॉफ्ट टेनिस, जैमीना रजिस्टर्ड अ क्लीन 4-0 स्वीप अगेंस्ट पाकिस्तान हुसैन अरायन एंड मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी, वाइल आद्या तिवारी फेल 1-4 टू थाईलैंड अलीशा जिलगर इन वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी। फेंसिंग की भी अगर हम बात करें तो सचिन और हिमांश सिंह, दोनों सचिन हमारी तरफ से थे पूल 5 के अंदर और हिमांश सिंह रहे पूल 1 के अंदर। उन्होंने चौथे स्थान पर अपने अपने पूल के अंदर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में फिनिश किया। वहीं अगर कराटे की बात करें तो चेतन भट्ट सफर्ड हार्ट ब्रेक इन द मेंस 84 kg कुमिती सेमीफाइनल, नैरोली मिसिंग आउट ऑन अ स्पॉट इन द फाइनल वाया द सेंच रूल। अब स्विमिंग की ओर बढ़ते हैं। आर्यन नेहरा टच द वॉल फोर्थ एंड फाइनल बी ऑफ द मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल। वुशु में हमारी तरफ से देवी हंजाबाम फिनिश 9th इन द वुमेन्स नान क्वान फाइनल। एंड मूविंग ऑन, यहां से भी आगे आएंगे सेपक तरो की तरफ, जहां इंडिया की कैंपेन सफर्ड अनदर सेटबैक फॉलिंग 0-2 मलेशिया इन मेंस टीम रेगू ग्रुप बी। एंड नाउ द ब्राइटर न्यूज ऑफ द डे। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग के अंदर साक्षी चौधरी हैज एंटर्ड इनटू द राउंड ऑफ 16। जी हां, शी डिलीवर्ड अ टैक्टिकल मास्टर क्लास इन द फाइनल राउंड, मैनेजिंग द रिंग स्मार्टली टू सील अ यूनानिमस 5-0 विक्ट्री ओवर पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आयरा विलेगस। कंट्रोलिंग द पेस, लैंडिंग प्रिसाइज शॉट्स एंड थ्वार्टिंग विलेगस अटेम्प्ट्स टू ब्रिज द गैप, द इंडियन pugilist cruise through to the round of 16. Well, अब साक्षी के लिए यहां से आगे का सफर दिखाता है कि she'll be up for a pre-quarter final clash against Kazakhstan's reigning world champion Alua Balkibekova. इसके बाद एक नजर बैडमिंटन की ओर भी आज डाल लेते हैं। बैडमिंटन में कहूंगी मैं कि पीवी सिंधु का के साथ आज बैडमिंटन की जो शुरुआत हुई, वहां पर हमने देखा कि कैसे पीवी सिंधु वाज अप अगेंस्ट जापानीज अकाने यामागुची। शुरुआत के मैचेस में या गेम्स में कहेंगे, पहला जो गेम था जहां पर पीवी सिंधु ने उस गेम को अपने नाम किया 23-22 से, वेरी नैरली बट अ वेरी गुड गेम दैट वी गॉट टू विटनेस, शी वाज एबल टू विन। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गेम के अंदर, पीवी सिंधु गॉट बीटन बाय द जापानीज 21-18 से, और तीसरा गेम फिर से क्विक सक्सेशन में पीवी सिंधु हार गई अपनी जापानीज ओपोनेंट से 21-11 से। As a result, that did not go in India's favor. उसके बाद आई उन्नति हुड्डा, जिन्होंने गेम नंबर 2 में, मैं कहूंगी उन्नति हुड्डा की तरफ से भी परफॉर्मेंस बैडमिंटन में निराशाजनक ही आज रहा, क्योंकि जो इसमें भी हमने देखा वहां पर भी शी वॉज इनिशियली ट्राइंग टू विन द गेम बट देन वेंट ऑन टू लूज द गेम अल्टीमेटली। डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम उन्नति हुड्डा एज तोमोका मायाजाकी फ्रॉम जापान मेड एन एग्जेम्पलरी कमबैक टू टेक द सेकेंड गेम अवे फ्रॉम 21-18। पहला गेम तो वो हार ही चुकी थी 16-21 से,

0: और दूसरा गेम दोबारा से वो हार गई, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वुमेन्स टीम का जो क्वार्टर फाइनल में कंटेंशन हम चाह रहे थे, क्योंकि ये पूरा एक टीम गेम है, वो हमारे लिए बहुत हमारे फेवर में नहीं गया। एंड थर्ड मैं बात करूंगी यहाँ पर कि उम्मीदें अभी बनी हुई हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली से, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग मैच जरूर हमने जीत लिया है अगेंस्ट युकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोतो। दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली, लेकिन अगर इनको हमारे सेमीफाइनल के होप्स को लाइव रखना है तो बहुत जरूरी है कि ये गेम भी ये जीते। सो फार इट्स नॉट बीन टू ब्राइट अ न्यूज ओवरऑल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, एंड शूटिंग वंस अगेन टर्न्ड आउट टू बी the biggest disappointment should I say of the day today, because bahut ummeedein thi 10 meter air rifle mixed team finals ke andar, lekin rifle shooting ke andar hamara jo raha India finished 4th and hence missed out on a medal. Well, Elevenil, Valarivan aur Parth Mane were shattered by the result as they finished 4th with 376.3 points. So far the best news I can say has come only from the world of boxing, lekin din abhi bahut lamba hai, cricket bhi aane wala hai jahan pe Bharat ka medal contention rahega. We'll keep bringing these updates to you every hour. For now it's a goodbye.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो, आदाब पर आपका स्वागत है दोस्तों. नमस्ते, हेलो, आदाब उन सभी लिसनर्स को जो हमारे साथ 10 बजे से जुड़े हुए हैं. एंड आई नो दैट यू गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैरिफाइड अबाउट योर SIR, वोटर्स लिस्ट अपडेशन, जो भी आपका काम है. आई होप ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, FM रेनबो 101.9 मैनेज टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. तो दोस्तों, आज ट्यूसडे की सुनहरी सुबह क्या खूबसूरत रंग लाई है. इतने सारे इन्फॉर्मेटिव शोज हम आपके लिए लाते हैं और आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस करते हैं. सुबह सुबह एक फ्रेश सी वाइब और ढेर सारा प्यार गानों के साथ वेलकम है आप सबका. चलिए आज का दिन शुरू करते हैं थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ. नमस्ते, हेलो, आदाब पर, क्योंकि कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब हम खुद अंदर से थोड़ा सा चेंज लाने के लिए रेडी होते हैं. आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज. और आज का दिन इसी खूबसूरत थॉट्स से जुड़ा हुआ है. आज हम बात करेंगे क्या इम्पैक्ट है चेंज को लेकर हमारी जिंदगी में, क्यों जरूरी है ये. एंड ऑल्सो बिकॉज आज परिवर्तनी एकादशी भी है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो उसका इम्प्लीकेशन चेंज के हिसाब से क्या है हमारी जिंदगी में, इसके बारे में जरूर बात करेंगे. बने रहिए हमारे साथ ऑन द शो. नमस्ते, हेलो, आदाब.

तो दोस्तों, नमस्ते, हेलो, आदाब। पर मैं आपको बताने वाली थी कि आज चेंज का क्या महत्व है, और वो भी हिंदू कैलेंडर के परिवर्तनी एकादशी से रिलेटेड। तो परिवर्तनी एकादशी जो है, उसे परिवर्तनी नाम ही अपने आप में कितना ब्यूटीफुल है, राइट? परिवर्तन मतलब चेंज, और चेंज तो हम सबकी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट है। कभी जॉब चेंज होती है, कभी सिटी चेंज होती है, कभी रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, कभी हमारे प्रायोरिटीज़ भी चेंज होते हैं, और कभी कभी सबसे बड़ा चेंज हम खुद बन जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए लिसनर्स, कि हर चेंज जो है वो स्कैरी नहीं होता, उससे डर नहीं लगना चाहिए हमें, क्योंकि कुछ चेंजेस हमें ग्रो करवाते हैं, और ग्रोथ इज़ वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? परिवर्तनी एकादशी का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी इसी चेंज, इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, कि ग्रोथ ज़रूरी है, अपने अंदर झांकना, अपनी गलतियों को समझना, अपने मन को शांत करना, और नेगेटिविटी को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ करना, क्योंकि एक साथ जो भी कष्ट हमने झेले हुए होते हैं ज़िंदगी में, या जो भी तकलीफ़ें हमें हुई होती है, वो एक साथ तो नहीं रिलीज़ होता। और ऑनेस्टली, अगर कोई आदत हमें खुश नहीं कर रही है, तो उसे बदलने का डिसीजन ज़रूरी है, एंड दैट

means, you know, removing negativity, embracing positivity, or you know, dheere dheere sari galat cheezon ko chhodne ki koshish aur sari khoobsurat cheezon ko apnane ki koshish, ye bhi parivartan ka ek ichha, you know, ek hissa hota hai. Aur life ekdam overnight to change nahi hoti, bas छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस अगर हम लाए जिंदगी के बदलाव के साथ तो बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है. तो 101.9 एफएम रेनबो पर आरजे पर्ल के साथ आज मॉर्निंग का रिमाइंडर बिल्कुल सिंपल. चेंज से डरना नहीं है, चेंज को समझना है, उसे अपनाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को भी एक हमेशा फ्रेश स्टार्ट देना ज़रूरी होता है. नमस्ते, हेलो, आदाब. शो सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 101.9 एफएम रेनबो पर. सुनते रहिए एफएम रेनबो. कुछ ही देर में जाएंगे, जानेंगे कि एकादशी तिथि का क्या महत्व है आजकल के ज़माने में. यू नो, इस ज़माने में जहाँ पे ऑनलाइन रील्स, इतने सारे सोशल इम्पैक्ट, बहुत सारा आवाज़, बहुत सारे चेंजेस जो आ रहे हैं विथ आर फोन्स, विथ सोशल लाइफ, उसमें इस चीज़ का क्या महत्व है, कुछ देर में जानेंगे. बने रहिए ऑल इंडिया रेडियो पर. 101.9 एफएम रेनबो है ये, और शो का नाम नमस्ते हेलो आदाब.

0: हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ हैं इस वक्त दोस्तों अभिनव पुंछी. और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ी खबर आज के दिन की, जो कि है भारतीय महिलाओं का क्रिकेट का मुकाबला. दे आर प्लेइंग द गेम अगेंस्ट श्रीलंका. इट्स द फाइनल मैच एंड वी डू होप इन दिस. Our hopes are resting on the Indian women cricketers that they'll be getting us the gold today. The first time in this Asian Games when the Indians can eye a gold medal and hope for that. Bharatiya kaptan hamari taraf se Harmanpreet Kaur ne toss jeet kar pehle aaj ballebazi karne ka nirnay liya. And that has proven to be very lucky for the Indians because they are off to a frolicking start. Jahan 14.3 over mein Bhartiya mahilaon ne abhi tak 141 on board bana diye ek wicket gawakar, jo ki gaya Shefali Verma ka, jinhone aaj 48 run banaye 29 balls mein. She just missed out on a half century by a mere two runs over there thanks to a stupendous catch that was caught by Kavya Kabandi on the ball of Chamudi Prabodha. Much needed wicket out there for the Sri Lankans because this partnership was getting very, very stable and sturdy between Shefali Verma and of course Smriti Mandana, but they were able to get a breakthrough on 99 runs. So a good start, Abhinav, for the Indians out there.
1: Yes, a brilliant start by our Indian women in blue, and hopefully they keep going great guns. And unfortunately, table tennis ke arena se itni achhi news nahi hai kyunki ek bahut tough encounter tha इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम का साउथ कोरिया के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल्स मैच में. हरमीत देसाई, मनुषा और मानव थक्कर तीनों अपना सिंगल्स मैच हार चुके हैं और उस हार के बाद, वो 3-0 जीत के बाद, साउथ कोरिया ने एडवांस करा है क्वार्टर फाइनल्स में. बट हमारे लिसनर्स डिसअपॉइंट मत हुई है क्योंकि हमारी इंडियन विमेन्स टीम जो टेबल टेनिस की टीम है वो अपना मैच जीती थी प्री क्वार्टर फाइनल्स का थाईलैंड के खिलाफ 3-2 से. और आज हमारा क्वार्टर फाइनल है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ at 3:50 PM.
0: जी, और जैसे हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि हरमनप्रीत कौर जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी. जी हाँ, 73 रनों पर हरमनप्रीत कौर आज आउट हो गई हैं. 42 गेंदों में 73 रन उन्होंने आज बनाए भारत के लिए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के मौजूद थे. एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 173.8, द विकेट कमिंग जस्ट एट द राइट टाइम. एंड वी नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स फेंसिंग, वेयर द इंडियन मेंस individual foil campaign has come to an end in the round of 32 with both fencers crashing out against the Kazakh opposition. Himanshu Singh Sanasam also succumbed to a 9-15 defeat against Kalem Nurumov, while 17-year-old prospect Sachin met an identical feat, falling 9-15 to Timofey Semyonov. So, Bharatiya men ka individual foil category ke fencing mein bhi aakar Asian Games 2026 mein samapan ho gaya hai.
1: जी हाँ, एंड लेट्स टॉक अबाउट बैडमिंटन, जिसमें विमेन्स टीम का कैंपेन खत्म हुआ है. अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट ऑल दे 3 सिंगल्स मैचेस टुडे. पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, तन्वी शाह ऑल लॉस्ट दे सिंगल्स मैचेस. द ओनली ब्राइट स्पॉट वाज गायत्री गोपीचंद एंड त्रिशा जॉली हु वन दे डबल्स मैच. मगर निराश मत हुई है क्योंकि हमारी मेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में खेल रही है जापान के साथ. 11:30 बजे ये मैच शुरू होना था एंड द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट अबाउट टू बिगिन. सो होपफुली द इंडियन मेन्स टीम गेट्स अस सम गुड न्यूज फ्रॉम द बैडमिंटन कोर्ट्स.
0: जी, एंड अ स्लाइट करेक्शन टू बी मेड ओवर देयर कि स्मृति मंदना अभी भी क्रीज पर टिकी हुई है. जी हाँ, 73 रन उन्होंने बनाए हैं, 43 गेंदों में उनका विकेट नहीं गया है. हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की जो कप्तान है, उनका विकेट जा चुका है. 17 गेंदों में 19 रन का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया. बट स्मृति मंदना ऑल होप्स रेस्टिंग ऑन हर शोल्डर्स टुडे, क्योंकि शायद आज वो दिन भी हो सकता है जहां हम उनके बल्ले से 100 रन यानी सेंचुरी आते हुए देख ले. ही इज विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट. इंडिया गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. कमिंग बैक नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू, जो है कबड्डी की दुनिया से, जहां भारत ने आज साउथ कोरिया को 63-31 से हरा दिया इन द मेंस कैटेगरी. एंड दैट वाज अ वेरी कन्विंसिंग सॉलिड विन. अब भारत बांग्लादेश को कल फेस करेगा इन द ग्रुप स्टेज अगेंस्ट चाइनीज तेपाई, व्हिच विल बी द नेक्स्ट गेम कमिंग अप टुमारो इन कबड्डी.
1: Of course, a great news there from Kabaddi, and also great news from boxing because Sakshi Chaudhary has beaten the Paris Olympics bronze medalist Era Villegas and has advanced to the women's round of 16 in boxing 51 kgs. And please do not miss Jadumani Singh ka bout hone wala hai Chandra Bahadur Thapar ke khilaf, 55 kg round of 32. This is going to happen at 2 PM. And of course, we will be back with the latest updates and hopefully Smriti Mandana ki century ke saath 12:30 baje only on Akashwani. So hopefully

दोस्तों, शाश्वत सिंह और पूर्वी कौतिश की आवाज़ में आपने सुना रूबी रूबी संजू मूवी से। और वेलकम बैक। एकादशी तिथि का क्या महत्व है? एकादशी तिथि का बेसिक महत्व परिवर्तनी एकादशी। इस साल 2026 में इसका व्रत जो है 22 सितंबर को है, यानी आज शुरू होगा, और इसका इम्पोर्टेंस कल तक चलेगा, 22 तक चलेगा। क्या इसका जो है वो कनेक्शन दिमागी सुकून से है? स्पिरिचुअल सेंस में हाँ, और इमोशनल हेल्थ के सेंस में भी हाँ, मेंटल हेल्थ के सेंस में भी कहूँ तो बिल्कुल। एकादशी को सिर्फ खाना ना खाने का दिन समझना थोड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन होगा। इसमें एक आइडिया है इंद्रिय संयम, रूटीन से पॉज लेना, प्रार्थना करना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना। आज के ज़माने में इसको बहुत ब्यूटिफुली रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों फ़ोन है, नोटिफिकेशंस है, सोशल मीडिया है, बहुत सारा वर्क प्रेशर है और फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, और जी हाँ, हमारे हेल्थ को सजो के रखना है, उसको संभालना है, ये भी एक काम है हमारे ऊपर, बिकॉज हेल्थ क्राइसिस हमारे चारों ओर हमें दिखाई देते हैं, माइंड को लिटरली ब्रेक नहीं मिलता इन सब चीज़ों को सॉर्ट करते करते। तो एकादशी का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एंड ज़रूर हो सकता है, क्योंकि एक दिन अपने माइंड को भी थोड़ा फास्टिंग देना ज़रूरी है, फ़ोन से थोड़ा ब्रेक, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से ब्रेक, नेगेटिव थॉट्स से ब्रेक, उससे अपने थॉट्स जो नेगेटिव चलते हैं उसे बार बार रिपीट ना करना, ओवरथिंकिंग से ब्रेक लेना, ये सारे मायने होते हैं इस दिन के। और थोड़ा वक्त प्रेयर, साइलेंस, ग्रैटिट्यूड के साथ जब हम स्पेंड करते हैं, उससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। साइंस क्या कहती है? फास्टिंग और मेंटल वेलबींग पर रिसर्च हुई है काफ़ी, और कुछ सिस्टमैटिक रिव्यूज़ में फास्टिंग के साथ साथ एन्जाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखी है लोगों को, एंड दिस हैज़ बीन साइंटिफिक proven in many researches. Isn't that amazing? So in short, एकादशी सिर्फ पेट का फास्टिंग नहीं है, माइंड की भी पॉज हो सकता है, माइंड का पॉज हो सकता है। और आज के ज़माने में हम डिटॉक्स का मतलब फ़ोन डिटॉक्स, सोशल मीडिया डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स समझते हैं। एकादशी की स्पिरिचुअल फिलॉसफी को इसी लेंस से समझा जा सकता है, और थोड़ा कंजम्पशन कम, थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन ज़्यादा कर सकते हैं हम। इसीलिए रेडियो हमारा बहुत ही प्यारा साथी हो सकता है, क्योंकि रेडियो का कंजम्पशन जो है वो हमारे साथ साथ, हमारे काम के साथ साथ चलता रहता है बैकग्राउंड में, एक साथी की तरह जो हमें प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन, प्यारी प्यारा म्यूज़िक सुनाते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे काम को रोक दे, या वो हमारे मेंटल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, हमें पॉजिटिव रखता है, एंड विच इज़ वाई रेडियो सुनने वाले काफ़ी खुश रहते हैं, आई वुड ऑब्जर्व दैट। तो आज के ज़माने में ये काफ़ी लागू होता है, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो भी तिथियां लिखी हुई गई थी, ये पुराने ज़माने का की बातें नहीं है, इसे हम आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू कर सकते हैं। और फास्टिंग को हेल्थ का ट्रीटमेंट ना, हेल्थ के ट्रीटमेंट की तरह ना ले, ऑफकोर्स उसके हेल्थ के फ़ायदे भी होते हैं, बट उसे मेंटल वेलबींग की तरह ले। और जो लोग मेडिकल रीजंस की वजह से फास्टिंग नहीं कर सकते, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है या कुछ और, उनके लिए प्रेयर, रिफ्लेक्शन और काफ़ी सारे सेल्फ डिसिप्लिन भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बन सकता है। बिना फूड रिस्ट्रिक्शन के भी आप मीनिंगफुल फास्टिंग कर सकते हैं, और अपने दिल को, अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं। यह आपकी पर्सनल तरीका है फास्टिंग का और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो हमेशा उस पर ध्यान दीजिए, उसके तरफ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप हमेशा
पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते या पिछले दिन से ज़्यादा बेटर हो. एंड द बेटर यू आर, तभी आप दूसरों को भी उतनी ही खुशियाँ दे पाएंगे जितनी खुशियाँ आपके अंदर है, है ना? तो बने रहिए इसी थॉट के साथ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हैदराबाद का 101.9 एफएम रेनबो केंद्र है ये, और मेरा नाम है पर्ल, आरजे पर्ल के साथ आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब.

0: కనకలత. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा. उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है. उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी.
1: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर. दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू डेलिब्रेट ऑन द प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट.

0: government. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: पांच दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन. जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं. नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है. तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है. नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी. 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा. आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है. इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा. 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे. स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है. न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं. राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए. expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने.
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया. ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई. भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया. विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई. मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किये. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई. एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है. इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए. स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली. इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया. ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं. घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई. सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी. The news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force ANTF heads of states and UTs in New Delhi. The two-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and union territories are attending the conference being organized by the Narcotics Control Bureau, NCB. Based on the theme of the United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on progress of targets assigned to states and UTs, ANTFs, in recently released vision document on narcotics control 2026-29. During the conference, deliberations will also focus on identifying and adopting appropriate strategies to further strengthen the central government's measures for supply reduction, demand reduction, and harm reduction. Vice President C.P. Radhakrishnan today inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi. Addressing on the occasion, he stressed upon the precise usage of water and highlighted that it should be conserved. He outlined that Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon processing challenges of water management.
0: This shows the importance of water because the population is increasing, the urbanization is increasing, we have to produce more food grains. When the urbanization increases, we need more water for cleaning, for drinking. The usage of water is increasing every day. So we all must make a clear awareness in ourselves as well as the wherever we go, the water should be used preciously.
3: Jal Shakti Minister C.R. Patil highlighted the importance of water conservation and said the government is committed in providing safe and sufficient drinking water to every citizen in the country. The theme of this year's Water Week is climate resilient water management. Marking a new chapter in Indian cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The President will also honour veteran actor Anant Nag with the Dadasaheb Phalke Award for 2024. The Election Commission today announced by poll for one Rajya Sabha seat in West Bengal. The seat fell vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 16th of October. The Commission also announced the MLC election for 11 seats in Uttar Pradesh, 8 seats in Bihar, 5 seats in Maharashtra and 4 seats in Karnataka. Nomination for the polls will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 23rd of October. Karam Festival, a vibrant celebration of Jharkhand's rich tribal culture, nature and the bond between brothers and sisters, is being observed across the state today with traditional fervour and enthusiasm. President Draupadi Murmu extended wishes to all countrymen on the occasion of Karam Puja. Indian Eves opener Smriti Mandhana has created history as she has become the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti made this record during the Asian Games final against Sri Lanka in Captain Mithali Raj's record of 10,868 runs. Benchmark domestic equity indices gave up their initial gains and were trading with losses in the forenoon session today. The Sensex fell 198 points to 74,661, while the Nifty dipped 45 points to 23,369 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़।

दोस्तों नमस्ते, हेलो, आदाब। पर म्यूज़िक का सिलसिला जारी है और गपशप के सिलसिले को भी जारी रखते हुए आज मैं याद दिला दूँ आपको कि आज के दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड कार फ्री डे। दोस्तों, वर्ल्ड कार फ्री डे को सिर्फ कार्स के अगेंस्ट डे की तरह मत समझिए आप, ये नहीं है, बल्कि क्लीनर रोड्स, क्लीनर सिटीज़, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और हेल्दियर स्ट्रीट्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड कार फ्री डे को देखना ज़रूरी है। और वर्ल्ड कार फ्री डे का जो कोर पर्पस है, हर साल 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन। इसका बेसिक आइडिया है लोगों को एक दिन के लिए प्राइवेट कार्स पर डिपेंडेंसी जो है वो कम करने के लिए, और वॉकिंग या साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑल्टरनेटिव्स को एनकरेज करने के लिए। तो इसका लार्जर पर्पस सिर्फ एक दिन कार्स कम करना नहीं, इट्स अबाउट आस्किंग अ बिगर क्वेश्चन कि क्या हमारी सिटीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया जा सकता है जहाँ हर छोटी जर्नी जो हम करते हैं उसके लिए कार की ज़रूरत ना पड़े। ये सस्टेनेबल चॉइस क्यों है? क्योंकि प्राइवेट कार्स में अक्सर एक या दो लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन रोड स्पेस, फ्यूल, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, या वॉकिंग, साइकिलिंग, ऑल ऑफ दीज कैन मूव मोर पीपल विदाउट यूजिंग फ्यूल, मोर फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल, एंड लेस रोड स्पेस भी ऑक्यूपाई होगा। डिपेंडिंग ऑन द मोड, इट कैन हेल्प इन फ्यूअर एमिशंस पर पर्सन, जो जो कार्बन एमिशंस हम करते हैं, इसलिए कार फ्री थिंकिंग का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है आज के दिन। और बातें होंगी इस बारे में, म्यूजिक के उस पार बने रहिए। नमस्ते, हेलो, आदाब। पर

दोस्तों, हम बात कर रहे थे कार फ्री डे, यानी क्लीन एयर, लोअर फ्यूल कंजम्पशन, लेस ट्रैफिक कंजेशन के बारे में, एंड लेस डिमांड फॉर पार्किंग स्पेस ऑल्सो, इसके बारे में भी बात कर रहे थे. देर आर ऑफ कोर्स मोर वॉकेबल नेबरहुड्स एंड सिटीज़ वेयर पीपल कैन एक्चुअली स्पेंड टाइम आउटडोर्स, लेकिन आज के ज़माने में बहुत रिलेटेबल बन सकता है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, पेट्रोल महंगा है, पार्किंग नहीं मिलती, लेकिन छोटे छोटे डिस्टेंस पे चल के जाना हमें लाजमी नहीं लगता. तो इट्स अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, लेकिन कभी कभी सोल्यूशन ये भी है कि हर जर्नी के लिए कार को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ना बनाया जाए. अगर नियर बाय डेस्टिनेशन है तो वॉक करना ज़रूरी हो जाता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है. दैट इज़ द पर्पस ऑफ टुडेज़ डे. पॉसिबल हो तो साइकिल करो, लॉन्गर जर्नी के लिए मेट्रो या बस यूज़ करना, कार पूलिंग का ऑप्शन कंसिडर करना, और जब कार की जेन्युइनली ज़रूरत हो तब सिर्फ मेक श्योर करना कि जितने पॉसिबल लोग हैं एक कार में आ जाए. सो यू रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन, रिड्यूस रोड स्पेस. सो बेसिकली कार्स आर बैड ऐसा तो नहीं है आज नो कार फ्री डे के मैसेज, लेकिन चॉइसेस समझदारी से करना, दैट्स द पर्पस ऑफ वर्ल्ड कार फ्री डे. इसका मतलब ये नहीं कि हर पर्सन हर सिचुएशन में कार छोड़ दे, लेकिन एल्डरली पीपल, पीपल विद डिसेबिलिटीज, फैमिलीज, यंग चिल्ड्रन, इमरजेंसीज एंड मैनी वर्क रिलेटेड जर्नीज जो है जिनके लिए कार बहुत ज़रूरी है, इनको प्रायोरिटी दी जाए. तो जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं करें, एंड गिव प्रायोरिटी टू समबडी दैट नीड्स द रोड स्पेस एंड द फ्यूल एंड द कार मोर देन वी डू. इसीलिए नॉन अर्जेंट सिचुएशंस में कार को जितना हो सके कम यूज़ करना is very very an intelligent choice, I would say. तो goal है unnecessary car trips को reduce करना and sustainability को बढ़ाना. So guys, World Car Free Day पर मैंने आपको कार छोड़ने का कोई लेक्चर तो नहीं दिया, और ये दिन का purpose भी वैसा नहीं है, but I just made sure that you rethink your relationship with your car. कार को convenience समझो, लेकिन convenience और necessity के बीच जो फ़र्क है उसे भी समझो. और सस्टेनेबल लिविंग शायद इसी अवेयरनेस से शुरू होती है. तो हर बार पूछिए, क्या मुझे ये चीज़ सच में चाहिए, ये मेरे पास कोई और प्रैक्टिकल ऑप्शन है तो मैं उसे अपना लेता हूँ या अपना लेती हूँ. तो यस, इसी सोच के साथ अगले गाने की ओर रुक मोड़ते हैं. स्टे ट्यून टू आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9. आरजे पर्ल के साथ शो का नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और अगला गाना खट्टा मीठा मूवी से ये रहा आपके लिए.

0: 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एशियन गेम्स 2026 के अपडेट लेके आए हैं। मैं अभिनव पुंछे, मेरे साथ है साक्षी मानवाल। और गुड न्यूज फ्रॉम द क्रिकेट फील्ड, इंडिया ने टारगेट दिया है श्रीलंका को गोल्ड मेडल मैच में 217 का। जी हाँ, इंडिया में 216 for 3। टॉप स्कोरिंग वाज स्मृति मंदना विद 79, शिफाली वर्मा 48 एंड अ स्टनिंग 22 बॉल 49 बाय ऋचा घोष। श्रीलंका जवाब में एक विकेट ऑलरेडी अपना खो चुके हैं, इमेश दुल्यानी आउट हो गए, मगर कैप्टन फैंटास्टिक चमारी अट्टापट्टू इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। याद दिलाएं, ये वही हैं जिन्होंने 83 नॉट आउट मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ, एंड दैट हैड मेड श्रीलंका चेज अ रिकॉर्ड टारगेट ओवर देयर। सो इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, इट्स हाई स्कोरिंग, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम वी अपडेट यू देयर इज सम विकेट्स, एंड होपफुली शिफाली दिस द कैप्टन फॉल्स।
2: Well, let's hope for the best for India. Always rooting for India. Go India, go the women in blue. And moving on to the next quick update. Dosto, aap log

0: हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग में तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी भारत की तरफ से बनी है जिन्होंने अपना राउंड ऑफ 32 में वुमेन्स एपी इंडिविजुअल को जीत कर विद अ कन्विंसिंग 15-10 की विक्ट्री थाईलैंड के नटापापट संगनियो के ऊपर. उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गई टुवर्ड्स द राउंड ऑफ 16. जी हाँ, मतलब दिस इज गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग बिकॉज तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी है जो अब राउंड ऑफ 16 में साउथ कोरिया की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सॉन्ग से रा के साथ अब उनका आमना सामना होगा. वहीं फेंसिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वुमेन्स एपी इंडिविजुअल में मितवा जेसंगबाई चौधरी या फिर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में भी हम अगर देखें हेमश सिंह सनासम या उसके साथ साथ सचिन, ये सारे ही प्लेयर्स अपने अपने राउंड से यानी राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए.
1: थैंक यू सो मच फॉर दैट साक्षी. अपडेट कमिंग इन फ्रॉम फेंसिंग. मगर बैडमिंटन से भी आपको अपडेट दीजिए तो इंडिया वर्सेस जापान क्वार्टर फाइनल्स आर ऑन राइट नाउ और एक्शन में है लक्ष्य सेन. उनके सामने कोडाई नारोका और इनका बहुत ही क्लोज इंकाउंटर चल रहा है. 1-1 चल रहा है क्योंकि पहला जो सेट था वो लक्ष्य सेन हारे थे 21-11 से. दूसरा सेट जीते 21-5 से. अभी 19-14 से पीछे है लक्ष्य सेन. याद दिलाएं इसके बाद हमारी सात्विक चिराग की जोड़ी होने वाली एक्शन में. तो होपफुली दिस टाई कैन बी टर्न्ड अराउंड एंड इंडिया हैज अ चांस बिकॉज आर इंडियन वुमेन आर ऑलरेडी आउट. द वुमेन्स टीम कैंपेन हैज एंडेड बिकॉज दे लॉस्ट अर्लियर टुडे टू थाईलैंड एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन वुमेन टीम बिकॉज सारे सिंगल्स मैचेस हम लोग हारे हैं एंड ओनली गायत्री गोपीचंद एंड टीसा जोली गिव अस सम गुड न्यूज.
0: राइट एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग जहां सुबह से हमारे पास शूटिंग में कुछ खास अच्छी खबरें नहीं आ रही थी. वहीं अगर अब हम स्कीट की बात करें तो मेन स्कीट के जो आज प्रदर्शन रहे हमारे भारतीय शूटर्स का मेन स्कीट के अंदर वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग रहे. मतलब अनंजीत सिंह नरूका सेकेंड प्लेस पर अभी बने हुए विद अ टोटल ऑफ 96 पॉइंट्स एंड ही हैज पुट हिमसेल्फ इन द प्राइम पोजिशन टू क्वालिफाई फॉर द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द मेन स्कीट इवेंट. वहीं मिराज अहमद खान इस समय 23rd प्लेस पर है विद अ टोटल ऑफ 91 पॉइंट्स और भवतेक सिंह गिल 35th पोजीशन पर है विद अ टोटल ऑफ 86 पॉइंट्स. तो यानी अनंतजीत सिंह नरूका ने अभी भी भारतीय शूटर्स और शूटिंग के कैंपेन की उम्मीदों में वो रोशनी रखी हुई है डालकर कि हो सकता है जिस तरह से वो 96 पॉइंट्स के साथ अभी बैठे हुए हैं he stands in a very good place to qualify for the individual finals also. अगर women's skeet standings की हम बात करते हैं जो आज की हमारी महिला shooters का प्रदर्शन रहा है women's skeet में, तो Raiza Dhillo has moved up to the 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhalewal इस समय 9th position पर है with a total of 89 points और Maheshwari Chauhan इस समय 16वें स्थान पर है with a total of 85 points.
1: थैंक यू फॉर दैट अपडेट अगेन साक्षी. और एक और आपको दे दें जाते हुए बस ब्रेकिंग न्यूज खबर. गुड न्यूज अगेन फॉर द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम. श्रीलंका हैव लॉस्ट दिस सेकंड विकेट सो होपफुली जस्ट 8 मोर टू गो. बस 8 विकेटें हैं और गोल्ड तय है हमारे. दैट्स ऑल फ्रॉम अस ऑन दिस अपडेट फ्रॉम आकाशवाणी. प्लीज स्टे ट्यून एंड एट 1:30 यू कैन कम बैक फॉर अनदर अपडेट.
0: And just to carry on with a quick one also over there because we have a little amount of time दर्शकों दोस्तों आपके साथ, तो quickly आपको बता दें कि भारत की जो अभी भी मेडल टैली में टेबल स्टैंडिंग है वो 12वें स्थान पर बनी हुई है. कुल मिलाकर हमारे पास अभी 6 मेडल्स या 6 टोटल मेडल्स है जिसमें 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है. लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट दीज हैव कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग. दीज हैव कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग प्राइमरली. बट For now, hoping that India gradually climbs up, it's a goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: You were listening to the Asian Games 2026 update.

गाइस, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड राइनो डे के बारे में. व्हाई राइनोज मैटर, राइनोसरस की बात कर रही हूँ मैं. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इकोसिस्टम बैलेंस के बारे में भी वर्ल्ड राइनो डे का जो कोर पर्पस है वो आज ही के दिन 22 सितंबर को याद दिलाती है हमें ये डे की ऑब्जर्वेंस. इसका पर्पस राइनो स्पीशीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और उनके कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स को हाईलाइट करना है. राइनोज जो है वो दुनिया के बहुत ही पुराने ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लार्ज मैमल्स में से एक है और आज अफ्रीका और एशिया में राइनोज की डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है. और राइनोज के सामने नेचुरल हैबिटेट लॉस और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जैसे दो मेन थ्रेट्स है. और आखिर राइनोस को बचाना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो राइनोस सिर्फ यू नो दे आर नॉट जस्ट एनिमल्स लिविंग आउट देयर इन द वाइल्ड लाइफ, वो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं राइनोस अपने मूवमेंट और ग्रेजिंग के थ्रू. एंड उनके नेचुरल हैबिटेट्स जो है बहुत सारी स्पीशीज़ की तरह ही डायरेक्टली अफेक्ट करती है हम ह्यूमंस को. और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राइनोस पर डिपेंड करती है, बिकॉज इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा तो वील हैव आर क्रॉप्स, वील हैव आर जंगल्स इंटैक्ट. तो जब हम एक स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं हम अक्सर उसके साथ साथ अपने आप को, पूरे इकोसिस्टम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. और एनिमल्स को जंगल में सेफ रखना ये तो रही एक बात, पर दूसरी बात ये भी है कि फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स और उन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना जिन पर वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस दोनों डिपेंड करते हैं. हम अपनी डेली लाइफ में दोस्तों वाइल्ड लाइफ को रेयरली देखते हैं. जू जाना पड़ता है, हैदराबाद जू, शायद वहाँ पे दिख जाते हैं. ऑफ कोर्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्पेशली हैदराबाद जैसी सिटी में हम ट्रैफिक देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, मॉल्स देखते हैं, इमारतों से भरी सड़कें एंड ऑल दैट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेचर जो है हमारी लाइफ से डिसकनेक्टेड है. साफ सुथरा, यू नो, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ट्री, सॉइल, क्लाइमेट, बहुत सारे फूड सिस्टम्स भी हमसे जुड़े होते हैं और ये सिटी लाइफ में भी ज़रूरी है. हम उसे देख नहीं पाते डायरेक्टली क्योंकि हम किसी फॉरेस्ट एरिया में या गांव में नहीं रहते, पर हम सभी को ये अफेक्ट ज़रूर करता है. और आप में अल्टीमेटली नेचुरल इकोसिस्टम से कनेक्टेड होने का जो सेंस है वो ऐसे सारे डेज के ऑब्जर्वेंसेस से रिन्यू हो जाता है. और राइनोज को बचाना डायरेक्टली हमारी लाइफ को चेंज नहीं करेगा आज के दिन, बट हेल्दी इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करेगा इवेंचुअली. और ये लोग यू नो लॉन्ग टर्म में इसके इम्पोर्टेंस को समझाना चाहते हैं आज के दिन.

और दोस्तों राइनोस के जो हॉर्न्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड एक फैसिनेटिंग सी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी म्यूजिक के उस पार। बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन 101.9 FM रेनबो।

दोस्तों, कुछ ही थोड़ी देर पहले वर्ल्ड राइनोज डे पर राइनोज के जो हॉर्न्स होते हैं उससे रिलेटेड एक फैसिनेटिंग बात कहने का वादा किया था मैंने। तो हियर आई एम दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि राइनोज के जो हॉर्न्स को लेकर बहुत फैसिनेटिंग बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं। और इन रियलिटी राइनोज के हॉर्न प्राइमरीली केराटिन से बने होते हैं और ये वही बेसिक प्रोटीन है जो हमारे बालों में, हमारे फिंगर नेल्स में होता है। सो दैट इज़ वेयर ऑल दीज फैसिनेटिंग बिलीव्स कम फ्रॉम। हाउ अमेजिंग इज़ दैट, है ना? क्योंकि ये इंसानों के नेल्स और हेयर से कनेक्टेड है, उनके हॉर्न्स। बट अपार्ट फ्रॉम द फैसिनेटिंग कनेक्शन एंड द फैसिनेटिंग बिलीव्स जो आते हैं, इसी के चलते इलीगल डिमांड फॉर राइनोज हॉर्न्स भी है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसे यूज़ करके केराटिन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फॉर हेयर एंड नेल इम्प्रूवमेंट, विच इज़ इलीगल ऑफ कोर्स। यानी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वाइल्ड एनिमल है, सिर्फ कमोडिटी उसको समझा जाता है और उसके हॉर्न्स को यूज़ करके हम हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, विच आर ऑफकोर्स नॉट एनिमल फ्रेंडली, बट दुनिया के कई हिस्सों में ये होता है। एंड इसमें इट इज़ समथिंग दैट नेचर का वैल्यू, उसकी जगह नेचर में है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज किस तरह से एनिमल्स हमें यूज़फुल हो सके, इससे ज़्यादा एनिमल को अपने ही एनवायरनमेंट में रहने दे, उनकी नेचुरल वर्ल्ड में रखना बहुत ज़रूरी है उन्हें। और हम इंसानों ने दुनिया को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत बदल दिया है ऑलरेडी, लेकिन मेरे ख्याल से हर जंगल को कन्वर्ट करना शॉपिंग मॉल में, ये ज़रूरी नहीं है। हर एनिमल के किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ करना, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो नेचर को नेचर रहने दो। इट रिमाइंड्स अस दैट अ हेल्दी प्लैनेट is the one where humans are not the only species that get to live and thrive. Anyway, घड़ी के कांटे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हमारा हेलो रेनबो का घंटा शुरू हो चुका है, और मैं बस अभी अभी अभी बताती हूँ आपको क्या है टॉपिक आज के हेलो रेनबो का।

तो दोस्तों, हेलो रेनबो का आज का फोन इन टॉपिक, क्या आज भी घर की याद आपको परेशान करती है? जब आप अपने माँ बाप का घर या अपने गांव जाकर वापस लौटते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या वो दूरी का दर्द कभी पूरा होता है या फिर जाता है? हेलो रेनबो फोन इन का वक्त आ गया है। आज का सवाल थोड़ा दिल के करीब, थोड़ा हैवी भी, शायद किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा। जब आप अपने माँ बाप के घर जाते हैं या अपने गांव जाते हैं, वहाँ कुछ दिन बिताते हैं, पुरानी गलियों में घूमते हैं, अपने पुराने कमरे को देखते हैं या अपने पुराने घर को, या माँ के हाथ का खाना खाते हैं, पापा की आवाज़ सुनते हैं, या बस घर के आंगन में बैठकर पुरानी यादें याद करते हैं, जो भी आपकी स्थिति हो। और फिर वापस जब अपनी ज़िंदगी में लौटते हैं आप, तो उस वक्त दिल में क्या होता है? क्या घर से निकलते वक्त एक अजीब सी खाली खाली फीलिंग आती है? क्या ट्रेन या फ्लाइट या कार में वापस आते वक्त आपको लगता है कि काश थोड़ा और रुक पाते? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के घर से नहीं या गांव, हमारे गांव से नहीं, बल्कि अपने बचपन से वापस

रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दर्द कभी पूरा होता है या पूरी तरह से जाता है? ये फिर वक्त के साथ हम बस संभल जाते हैं, उस दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। आज हेलो रेनबो पर हम बात करेंगे इसी फीलिंग की। आप हमें बताइए, जब आप अपने पेरेंट्स के घर या अपने गांव से वापस लौटते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको भी लगता है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हम कितनी भी दूर चाहे चले जाएं, उस जगह की याद हमें नहीं छोड़ती? कॉल कीजिए 101.9 FM रेनबो पर और आरजे पर्ल के साथ शेयर कीजिए अपनी कहानी। हेलो रेनबो, फोन इन प्रोग्राम चल रहा है। आज बात होगी घर की, बचपन की, माँ पापा की, बचपन वाले घर की या गांव की, और उस फीलिंग की जो शायद हर किसी के लिए थोड़ी अलग होती है, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं, हमारे रूट्स कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, हमारा घर कहीं ना कहीं होता है। एंड इफ़ यू आर लकी, आप वहीं पर रह रहे होते हैं और पुरानी यादों के साथ रोज़ उन यादों को ताज़ा कर सकते हो। लेकिन बट देर आर सम पीपल हु हैव मूव्ड अवे एंड उसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ आरजे पर्ल, सुनिए, बोलिए और दिल की बात हमारे साथ शेयर कीजिए। इसका इमोशनल कोर बहुत सिंपल है। कभी कभी हम घर से दूर नहीं होते, हम बस उस घर से दूर होते हैं जहाँ हमारा बचपन रह गया हो। सो वेटिंग फॉर योर कॉल्स, डायल कीजिए, नंबर्स मैं अनाउंस करूँगी 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715।

0: तो दोस्तों, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून।
1: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून पर्ल मैडम श्रीनिवास राव मलक पेट माँ। तो
0: गुड आफ्टरनून श्रीनिवास जी, बताइए।
1: आपका टॉपिक क्या है? बचपन गुजरात से बोल रहे ना?
0: जी, और हम जब घर या माँ बाप का घर या गांव छोड़कर जब वापस आते हैं,
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: उस फीलिंग के बारे में।
1: तो क्या एक्चुअली क्या है, बचपन में तो घर के बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि माँ बाप के साथ ही बच्चे रहते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: आप बोले वैसा जब भी बच्चे या घर में बराबर पढ़ते नहीं पढ़ते तो जब उन लोगों को स्कूल से निकाल के कहीं हॉस्टल में डाल देते हैं, ऐसा वो इनका बच्चों को जरा बहुत मुश्किल पड़ता है। तो
0: जी जी
1: हम क्या करें, हमारे बचपन में तो हमारे चाचा जी हमारे को वारंगल में टीचर काम करते थे, तो हमारे पिताजी को बोले मैं इसको लेके जाती हूँ, मेरे साथ लेके जाता हूँ, मैं इसको वहाँ पढ़ाता हूँ। बोलते हैं अच्छी बात है। बोल क्या, मैं बचपन में नया मोस्ट प्रॉबली 57 58 होंगे मेरे ख्याल से। सो यदि मैं वो वारंगल जाके वहाँ पर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वहाँ पर कंप्लीट किया था, तो आप बोले वैसा मैडम एक्चुअली वो टाइम में तो उतना ख्याल माँ बाप का मेरे को आया ही नहीं, क्योंकि चिट्टा के साथ जाते थे, खाना घर में ही पका ले रहे थे, खाना खा के स्कूल नजदीक था, चलते हुए जाते थे चलते हुए आते थे। इट वॉज वेरी नाइस, आई मीन द टाइम ऑफ द एटमोसफियर यू कैनॉट इमेजिन, क्योंकि वो कभी आप बोले वैसा याद ही नहीं आया। बट वेन आई ग्रोन अप एंड अगेन आई वेंट टू आलेर बोल के यहाँ पर ही है, यादादरी के बाजू में है, तो वहां पर टीचर चाचा जी आए, तो फिर मैं 8th क्लास में जाने को, जब आप बोले वैसा मेरे को बहुत ही मदर
0: जी
1: फादर का याद आ रहा था, याद वहां से
0: जी
1: आके
0: जी
1: यहाँ पर आते
0: जी
1: थे तो अच्छा
0: बहुत खूबसूरत बात
1: मार्गदर्शन
0: आपने बताई
1: मिल
0: सर,
1: जाता
0: कि
1: ना।
0: काफी बार ऐसे भी होता है कि उस फीलिंग से हमें लगता है कि हम उभर गए हैं, लेकिन एक बार घर की याद फिर से ताजा हो जाती है जब हम उनसे फिर से मिलकर आते हैं।
1: तो
0: जी जी सर, थैंक यू
1: वैसा
0: फॉर शेयरिंग दैट विद
1: भाइयों
0: अस।
1: या माँ यार तो
0: या थैंक यू
1: भाइयों से मिलने का बहुत ही ये था, तो
0: जी
1: अच्छा आके मिलके कर लेके खेल ले रहे थे। अच्छा इट वॉज ए वेरी
0: जी
1: नाइस
0: सर,
1: थैंक
0: थैंक यू श्रीनिवास
1: यू
0: जी,
1: माँ
0: थैंक यू सो
1: थैंक यू
0: मच।
1: माँ थैंक यू माँ थैंक यू वेरी मच माँ।
0: हेलो, हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब,
0: गुड।
1: कैसे?

0: आफ्टरनून, आदाब आदाब आदाब, बताइए आप ऑन एयर हैं।
1: शेर खान बोल रहा हूँ तालाब कट्टा मलनगर से, और सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को प्यार भरा सलाम आदाब।
0: जी जी शेर खान जी, आदाब।
1: सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे।
0: शुक्रिया शुक्रिया, बताइए तो आप घर से दूर हैं या घर पर ही रहते हैं जहाँ पर आपका बचपन बीता?
1: मैं घर से बहुत दूर हूँ
0: अरे
1: पंडित,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: मैं बचपन में जो हमारा घर था,
0: हाँ
1: हमारे मम्मी पापा भाई बहन जो थे एक घर में रहते थे, एक भरा पूरा हरा भरा परिवार था एक।
0: अच्छा।
1: और 3 साल की उम्र में मेरी आंखों में कैंसर हो गया, तो मेरी आंखें निकाल ली गई, ब्लाइंड हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उसके बाद फिर बहुत लाड़ दुलार प्यार बहुत कुछ मिलता था पापा से, मम्मी तो ज्यादा प्यार नहीं करते थे। और फिर बाद में हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई, थोड़े बड़े होते होते होते हम सब पिछड़ गए, सब बिखर गए। तो फिर कोई किसी में कोई मोहब्बत नहीं रही, किसी में कोई अखलाक नहीं रहे, सब अपना अपना देखने में लग गए। और मैं ब्लाइंड होने की वजह से मुझे भी कोई ज्यादा नहीं चाहता था घर में लोग। तो फिर वो घर से निकल गए हम। आज भी मैं जब वो घर पे जाता हूँ, वही मोहल्ला है, पड़ोस के लोग बहुत चाहते हैं, वहाँ
0: अच्छा।
1: मेरी मस्जिद है, वो मस्जिद में मेरा दिल लगा हुआ है। वो घर
0: अच्छा।
1: में जब मैं जाता हूँ तो वो घर से कुछ अजब सी फीलिंग होती है, मैं घर छोड़ने को जी नहीं चाहता। मम्मी है
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: मुझे मम्मी रखना नहीं चाहते अपने पास में,
0: अच्छा
1: इतना मम्मी मुझे नहीं चाहते है मेरे।
0: अच्छा
1: तो अभी
0: अच्छा
1: मैं पापा के साथ रहता हूँ, एकदम
0: हाँ,
1: फैमिली में
0: लेकिन फिर भी
1: अपने
0: आपका लगाव
1: यहाँ
0: घर
1: पे
0: से तो है, ये बहुत
1: बहुत है।
0: अच्छी
1: वो
0: बात
1: एक
0: थी। जी हाँ
1: इमोशनल अटैचमेंट, बहुत
0: जी
1: इमोशनल
0: जी
1: याद
0: जी
1: है मेरी, बहुत लंबी दास्तान है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ। तो
0: हाँ जी।
1: हमेशा याद आते
0: तो
1: रहता
0: ये
1: है
0: इसी
1: मुझे,
0: शहर में
1: और आज भी
0: हैदराबाद
1: आपका
0: में है
1: टॉपिक लाए तो
0: या
1: बहुत
0: किसी
1: याद आ गया
0: गांव में
1: मुझे।
0: है?
1: जी, गांव
0: आपका
1: में घर
0: घर?
1: है, अभी तो
0: अच्छा
1: मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन
0: अच्छा
1: वो
0: अच्छा
1: बहुत याद आती है मुझे वो।
0: जी जी जी जी जी
1: तो मैं अपने बहन भाइनों को भी सलाम करना चाहूंगा, मुमताज बाजी को भी तहे दिल से सलाम, मैं जमीन बाजी को, मोहम्मद अफजल साहब
0: जी
1: को। और
0: हाँ
1: पल जी कुछ हो सके तो पुराना सॉन्ग प्ले कीजिए ना, इस पे लता
0: जी
1: मंगेशकर की आवाज में है
0: हाँ
1: वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई, नजर के
0: हाँ
1: सामने घटा सी छा गई।
0: हाँ हाँ मैं कोशिश करती हूँ वो गाना इस प्लेलिस्ट में ऐड करने की सर।
1: हाँ, और दूसरा है एक मुमताज बाजी के पसंद का है, फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। याद ना जाए बीते दिनों की, जाकर ना आए वो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें फिर, दिल क्यों बुलाए।
0: जी जी जी गाना
1: तो
0: बहुत
1: जी
0: ही
1: चलिए,
0: एप्ट
1: ये
0: है
1: दोनों
0: टॉपिक
1: मैसेज
0: को
1: देता
0: लेकर।
1: हूँ, पुराने
0: जी
1: सॉन्ग को
0: जी
1: लेकर
0: उस
1: फिर
0: गाने
1: आप
0: को
1: इतना
0: प्ले करने
1: टॉपिक
0: की
1: लाए,
0: कोशिश
1: ये
0: करेंगे।
1: याद वाला सॉन्ग से इसको और भी अच्छा कर दीजिए जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप वक्त
0: थैंक यू
1: दिए
0: फॉर
1: पल जी,
0: शेयरिंग योर
1: बहुत
0: स्टोरी
1: खुश
0: सर,
1: होंगे आप।
0: थैंक यू। अपना अपना
1: बहुत
0: ख्याल
1: शुक्रिया
0: रखिए।
1: आपको, सभी आरजे को मेरा प्यार भरा सलाम है, जेडी साहब को, जय श्री जी, निशा जी, आपको भी, थैंक यू।
0: जी थैंक यू सर, थैंक यू।

0: 147 runs, and the Indian women have defended their gold, which they won in Hangzhou 4 years ago. Fantastic performance with the bat by Smriti Mandana with 79, Shefali Verma 48, Richa Ghosh at 22 ball 49, aur uske baad wickets mein to kamal dikha DP Sharma with 3 wickets, Shefali ka fir se all-round performance, 2 wickets, Shriyanka Patil with 2 wickets as well, and Shri Channi with 2. So कमाल के परफॉर्मेंस और इंडिया के पास पहला गोल्ड आ चुका है. जी हाँ, सुबह से आप लोग हमारे अपडेट सुन रहे होंगे, थोड़े से निराश हो रहे होंगे क्योंकि इंडिया का आज अच्छा दिन नहीं गया, मगर साक्षी, व्हाट अ ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस विक्ट्री, एंड आई थिंक पूरे नेशन का जो मूड है आज is going to get much better and everybody is going to have a smile on their face.
1: Yes, indeed. और आज ये चेहरे की हंसी हटनी ही नहीं चाहिए, because हमारी लड़कियों ने हमें इतने सारे reasons दिए celebrate करने के लिए. सबसे ऊपर तो gold medal रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताएं कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए 8th लगातार 8वीं T20 इंटरनेशनल की जीत है. यस, दे हैव गॉन ऑन टू विन 8 T20 इंटरनेशनल्स ऑन अ ट्रॉट, एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. और उसके साथ साथ श्रीलंका ने आखिरी बार भारत को 2024 के एशिया कप के फाइनल्स में हराया था, वो हम सब जानते हैं. उसके बाद से भारतीय महिलाएं उनको 8 बार T20 इंटरनेशनल मैचेस में हरा चुकी हैं. और एक और बहुत अच्छी खबर जो है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, वो ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये जो 147 रन के मार्जिन से श्रीलंका को हराया है आज, वो अभिनव आज तक का सबसे बड़ा डिफीट मार्जिन है जो भारत ने किसी भी ओपोनेंट को दिया होगा. 147 इज द बिगेस्ट मार्जिन बाय विच इंडिया हैज डिफीटेड एन ऑपोजिशन नेशन इन अ T20 इंटरनेशनल.
0: It's been a glorious September. Indian women के लिए एशिया कप में उन्होंने धमाल दिखाया है, और आज उन्होंने एशियन गेम्स में सुपर धमाल दिखा दिया है ये जीत पाकर. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रिमेंडस एफर्ट बाय द इंटायर इंडियन वुमेन्स कंटेजेंट, कोचेज कंटेजेंट, सबको बहुत ढेर सारी बधाई, और हमारे देशवासियों को भी बहुत ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि अब इंडिया का गोल्ड का खाता खुल चुका है. जी हाँ, एंड इट इज नॉट द ओनली गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द एशियन गेम्स, वी हैव मोर गुड न्यूज फॉर यू, बिकॉज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई अगेंस्ट अ वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट कोडाई नारोका के खिलाफ. लक्ष्य सेन ने अपना मैच, पहला गेम हारा लक्ष्य सेन ने 11-21 से, दूसरा गेम जीता 21-5, मगर तीसरे गेम में ही वॉज डाउन 14-19, फिर भी कम बैक करके उन्होंने वो गेम जीती 21-19, वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट को हराया, इंडिया को वो 1-0 की लीड दी. एंड अनदर गुड थिंग इज सात्विक चिराग, हमारे फेवरेट डबल्स पेयर, अभी एक्शन में है, वो पहली गेम जीत चुके हैं अपने जापान के ओपोनेंट्स के अगेंस्ट. एंड साक्षी, कैन गिव अस डिटेल्स अबाउट दैट?
1: यस इंडीड, पहला गेम तो वो अपना जीत चुके हैं. हम बात करें सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की अगेंस्ट द ओपोनेंट्स होकी और कोबायाशी, लेकिन सेकंड गेम के अंदर भी इस समय बहुत तगड़ी फाइट दोस्तों चल रही है. जापान हैज ओनली अ 2-point लीड राइट नाउ ओवर द इंडियन ओपोनेंट्स, बिकॉज इनफैक्ट वो 2-point की लीड भी अब एकदम खत्म ही हो चुकी है, बिकॉज भारत के पास इस समय 18 पॉइंट्स है सेकंड गेम में और जापान के पास है 17. यानी गेम को मैच पॉइंट पर लाने के लिए इंडिया को 2 और अंक, इनफैक्ट कहना चाहिए जीतने के लिए 2 और अंक कमाने लगातार. अगर ऐसा होता है तो वेल, इंडिया शुड बी एबल टू गेव दिस इंटायर मैच इन देयर फेवर, बट राइट नाउ कीपिंग ऑल दोस होप्स एंड फेथ्स अप, इट्स टाइम फॉर अ मोमेंट फॉर अस टू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द विक्ट्री दैट हैज कम द वे एंड थ्रू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम. अ वेरी बिग milestone achieved over here by the Indian girls. Kudos to India. जय हिंद हमारे हर देशवासी को. और इसके साथ ही हम कहेंगे कि यहां से ये जो खुशियों की हम जो आपको खबर और अपडेट लेके आ रहे हैं, सिलसिला आप शुरू हो जाए और बरकरार रहे. फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे.

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: दोस्तों आज हेलो रेनबो पर हमने बात की घर की बात, बचपन और बीते दिनों की बात की, अपने गांव की बात की और उस घर की बात की जहां शायद हमारी सबसे खूबसूरत यादें रह गई हैं। कभी कभी घर से दूर आकर हमें समझ आता है कि घर जो है वो सिर्फ एक जगह नहीं है, घर वो लोग होते हैं जिनके पास हम बिना कुछ कहे भी अपने आप को समझा हुआ महसूस करते हैं, समझना पसंद करते हैं। और अगर आज भी घर की याद आपको थोड़ा सा परेशान करती है तो शायद इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, शायद इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ बहुत कीमती है जिसे आप दिल से याद रखते हैं। तो अगर माँ पापा का घर है उन्हें आज याद कीजिए, अगर वो है तो उन्हें फ़ोन कीजिए ज़रूर। अगर घर दूर है तो एक मैसेज ही सही या वो घर वालों की याद में एक दुआ ही सही। आपकी यादों को प्यार से संजो के रखिए, संभाल के रखिए और उसे ताज़ा रखिए। हमारा घर ही है जो हमारे रूट से हमें जुड़ा रखता है, क्योंकि ज़िंदगी हमें कितना भी आगे ले जाए कुछ घर हमारे अंदर हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इसी नोट पर मैं आरजे पर, आप सुन रहे थे हेलो रेनबो 101.9 FM। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जहाँ भी रहिए अपने अंदर थोड़ा सा घर ज़रूर संभाल कर रखिए। हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम घर ला रही है ट्रॉफी, गोल्ड मेडल जीत चुकी है वो, और जो हर घंटे हमें एशियन गेम्स के अपडेट्स मिल रहे हैं उसके बहुत ही ताज़ा लाइव अपडेट अभी हमने सुने, इन विच दे वन द गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। सो कंग्रेचुलेशंस टू द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। और ये खबर कल छपेगी शायद अब अखबार में, सोशल मीडिया पे आते आते थोड़ी देर लगेगी, बट ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 पर ताज़ा तरीन खबरें, खुशखबरी ऑफ कोर्स, तो ये बनाती है हमारे दोपहर को और भी रंगीन ऐसी खबरें। पर मेरे जाने का वक्त हो चुका है हेलो रेनबो पर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जुड़े रहिए हमारे अगले शो की का वक्त भी आने वाला है 2 बजे तक, और उसके बाद गानों का सिलसिला, अच्छी गपशप का सिलसिला तो जारी रहेगा और हर घंटे आपको एशियन गेम्स के अपडेट्स भी मिलेंगे, ताज़ा तरीन खबरें ऑफ ऑल द विक्ट्रीज एंड ऑल द प्रोग्रेस दैट वी आर गोइंग थ्रू आउट देयर। तो बने रहिए उसके लिए भी 101.9 FM रेनबो पर। मिलते हैं फिर एक नई सुबह, एक नई कहानी किसी और दिन, मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी और दिल से जुड़ी एक और म्यूजिकल जर्नी के साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे रेलेवेंट टॉपिक्स पर और दिल से दिल तक। तो तब तक के लिए गुड बाय, सुनते रहिए FM रेनबो। अगला शो जो है वो आपके लिए लाइंड अप है एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।

0: FM Rainbow 101.9
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
2: अफवाहों से
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
2: जागरूक बनिए
1: सजग रहिए।

0: ఇంకా
1: ఎవరెస్టు ఎంత ఎక్కేస్తానే నీకోసం.
0: అచ్చా.

0: రోజుని తసాలాల బొడ్డు చూసాంలేవా.
1: టైమ్ 3:30 కావస్తోంది. మరి 20వ ఆసియా గేమ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి జపాన్ లో, వాటికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ విందాం.
2: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
3: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी इस लाइव अपडेट में जो हम दोपहर के 3:30 बजे आपके लिए लेकर आ रहे हैं. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अभिनव पुंशी. और आज की दिन भर की सबसे अच्छी और खूबसूरत खबर तो यही रहेगी दोस्तों कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज श्रीलंका को हरा कर हमारे देश को पहला स्वर्ण पदक दिलवा दिया है. जी हाँ, द फर्स्ट गोल्ड मेडल हैज कम इन फॉर द इंडियंस थैंक्स टू आवर इंडियन गर्ल्स आउट देयर हु वेंट ऑन टू डिफीट श्रीलंका टुडे इन क्रिकेट बाय अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 147 रन्स. 216 भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवरों में बनाए जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने 3 विकेट गवाए. और वहीं जब श्रीलंका इसी टारगेट को चेज करने के लिए उतरा तो पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम सिर्फ 69 रन्स में सिमट गई, मात्र 15.4 ओवरों में सिमट गई 69 at a total of 69. एंड विद दैट नॉट ओनली डज दिस हेल्प कि भारत का जो अब मेडल टेबल में स्टैंडिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आ चुका है. हम एक समय पे आज 18वें स्थान पर आ गए थे लेकिन अब थैंक्स टू दिस गोल्ड मेडल भारत मेडल टैली में 8वें स्थान पर आ चुका है. 1 gold, 4 silver, 2 bronze, their total medals being 7. And the other good news that has just come in is that ek aur medal Bharat ke liye is waqt assure ho chuka hai. 2 times Asian Games medalist 2018 aur 2023 ki, 2018 and 2023, usme bhi hum aapko ye bata de ki 2023 mein world silver medalist Roshi Bena Devi has beaten Chu Mansin of Macau by WDP to reach the semi-finals in women's 60 kilograms in Sanda Wushu at Asian Games 2026. Ji haan, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत के लिए एक और मेडल अभिनव कंफर्म हो चुका है. एक ऐसा दिन फाइनली आ रहा है जहां हम सब के, आपके और मेरे चेहरे पे भी बहुत बड़ी मुस्कुराहट है.
4: जी हाँ, पूरे भारत में मुस्कुराहट होगी क्योंकि आर एथलीट्स आर डूइंग अस प्राउड. और याद दिलाएं, वुशु में एक और मेडल भी गारंटी हो सकता है बिकॉज आर्यन का क्वार्टर फाइनल उज्बेकिस्तान के सैदुलो के साथ बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, मेंस 56 kg. एंड अगर हम गारंटीड ब्रॉन्ज मेडल्स की बात कर रहे हैं तो इंडियन बैडमिंटन टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस, अ स्टनिंग विक्ट्री दे हैव हैड. दे हैव रीच द सेमी फाइनल्स एंड दे गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल. और इंडियन टीम की शानदार जीत का पूरा क्रेडिट देना चाहिए लक्ष्य सेन को. फैंटास्टिक

0: कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री हुई थी लक्ष्य सेन की। उसके बाद सात्विक चिराग ने अपना जोश दिखाया, उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में मैच जीता और फिर आयुष सेट्टी ने भी कोकी वाटरनाबी को हराकर इंडिया ने जापान को हराया और पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल्स में। तो शानदार प्रदर्शन हमारे इंडियन बैडमिंटन कंटिजेंट का। और उसके बाद बॉक्सिंग में भी जादूमणि सिंह ने अपना जादू दिखाया, हराया चंद्र बहादुर थापा को 5-0 55 kg राउंड ऑफ 32। सो इट्स बीन अ गुड आफ्टरनून हियर फॉर द इंडियन एथलीट्स एंड होपफुली थिंग्स गेट बेटर फ्रॉम हियर ऑन।
1: राइट, एंड द अदर गुड न्यूज तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि जितनी खुशखबरी हम आपको दे सकते थे इस अपडेट के अंदर वो तो हमने दे दी कि भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन आज का। लेकिन आप थोड़ी सी एक निराशाजनक खबर, लेकिन क्योंकि है जरूरी हम आपको देंगे जरूर, वो है स्विमिंग की दुनिया से, जिसमें 4x100 meter मेडले रिले के फाइनल्स में आज भारतीय स्विमर्स उत्कर्ष पाटिल, शब्दास, दानुश सुरेश, बेनिस्टन बेनिक्टन और आकाश माने ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन दिया। हाँ, हम 4x100 meter मेडले रिले के फाइनल्स में पहुंच जरूर गए, हमने प्रवेश कर लिया, लेकिन हमने उसके अंदर फिनिश किया है 8वें स्थान पर, यानी हम लास्ट आए हैं ऑलमोस्ट 3:44.26 seconds के अंदर। जी हाँ, इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फिनिश बाय आर इंडियन स्विमर्स आउट देयर इन द फाइनल्स, बट टू मेक इट टू द फाइनल्स ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट टू बी एन अकम्पलिशमेंट। एंड नाउ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि बॉक्सिंग में मेन्स पूल ए का मैच भारत और श्रीलंका के बीच इस वक्त शुरू हो चुका है, एंड वी आर काउंटिंग ऑन द गुड ग्रेसेस ऑफ आर हॉकी प्लेयर्स की अभिनव, दिस गेम शुड ऑल्सो बी गोइंग इन आवर फेवर।
0: Of course, and we are looking for a comprehensive win in hockey. Indian men and women's team have been on a goal spree in Aichi Nagoya. India aur Sri Lanka abhi to 0-0 hai. Match abhi bas shuru hi hua hai. First quarter chal raha hai. Magar hum chahenge ki India achhi tarah apna goals kare aur Sri Lanka ko comprehensively haraye, kyunki do bari mil chuke hain aur dono bari Asian Games mein India jeeta hai. Aur ek aur bhi bada contest hai, wo bhi hamara hone wala hai 3:50 ko. हमारे टेबल टेनिस की विमेन्स टीम इज गोइंग टू हैव देयर क्वार्टर फाइनल इनकाउंटर, दैट इज अनदर वेरी वेरी बिग मैच व्हिच इज गोइंग टू बी हैपनिंग हियर फ्रॉम द एशियन गेम्स। सो होपफुली वी हैव सम गुड न्यूज टू रिपोर्ट यू व्हेन वी कम बैक नेक्स्ट विद आवर अपडेट फॉर द एशियन गेम्स फ्रॉम आईची नगोया। सो स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी एंड होपफुली इंडिया कीप्स ब्रिंगिंग ग्लोरी, ऑल द एथलीट्स कीप डूइंग वेल।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: నిజంగా నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అంటూ ఎన్ని గుడ్ న్యూస్ లు చెప్పేశారు కదా అప్డేట్స్ లో, మరి మొత్తానికైతే శ్రీలంక పై భారత్ గెలిచింది, విమెన్ క్రికెట్ లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టేసింది. అండ్ అలాగే ఇందాక అప్డేట్స్ లో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఇంకొక రెండు మెడల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, ఒకటి సిల్వర్ అండ్ రెండోది బ్రాంజ్, రైట్? మరి ఆ రెండు అండ్ ఇంకా ఇంకా ఇంకా గోల్డ్ అన్ని మెడల్స్ గెలవాలని విష్ చేద్దాం. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఏం చేయాలి, జస్ట్ కీప్ లిస్నింగ్ టు FM Rainbow 101.9, రెయిన్బోతో జీవితం రంగులమయం.

0: चलचित्र खौन और कमिटी कुरुलू जैसी फिल्म भारत की समृद्ध क्षेत्रीय कहानी कहने की परंपराओं को भी सामने लाती है। नॉन फीचर फिल्म के विजेताओं ने भी उन कहानियों और जीवन की वास्तविकताओं को सामने लाया है जो अक्सर हमारे ध्यान से उझल रहती थी। भंगार श्रम, जीविका, संघर्ष और मानवीय गरिमा से जुड़े परिस्थितियों के बीच जीने की इच्छा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। रामनामी समुदाय की सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करती है। मुझे खुशी है कि आज अनंतनाग साहब को मैं सामने देख रहा हूँ। मालगुड़ी डेज, अंकुर, हमारे किशोरावस्था की खूबसूरत स्मृतियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कन्नड़ के साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं की 300 से भी अधिक फिल्मों में स्मरणीय चरित्र निभाए। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के सम्मान के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर नई आवाज, हर नई भाषा और हर नई कहानी के साथ भारतीय सिनेमा अधिक समावेशी, सशक्त और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष वेव्स के दौरान कहा था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब सिनेमा का दायित्व है कि वह हमारी ताकत को, विश्व को रूबरी होने का अवसर दे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे गांव, हमारे लोगों में जो हौसले की कहानियां छिपी है उसे विश्व के सामने वह सामने लाए। आज हम एकता नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा की छत्र छाया में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली से बाहर करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस पहल में सरदार पटेल की वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना। आने वाले समय में यह पुरस्कार समारोह अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं तथा दादा साहब फाल्के सम्मान से अलंकृत श्री अनंतनाग जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक उन्हें बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आपका हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार जी। सम्मान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आइए आज की इस गौरवपूर्ण संध्या के बहुप्रतीक्षित पल का पूरे उत्साह, सम्मान और उल्लास के साथ स्वागत करें, क्योंकि अब हम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय पुरस्कार वितरण की प्रथम कड़ी में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
2: The National Film Awards are divided into three comprehensive primary sections: Best Writing on Cinema, Non-Feature Films and Feature Films. And finally, the icing on the cake is the Dada Saheb Phalke Award, India's best and the highest lifetime achievement award in cinema, recognizing a lifetime of extraordinary contribution to the growth and development of Indian film. So let's now begin with the Best Writing on Cinema.
3: श्रोताओं, पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए स्वर्ण कमल का सम्मान मिल रहा है कन्नड़ भाषा के लेखक डॉक्टर केचनूरु प्रदीप कुमार शेट्टी को। उनकी पुस्तक नानिरुदे निमागागी, नानिरुडे नानागागी, कन्नड़ सिनेमा दा थातवा मथु राजकीया।
2: While the winner of the best book on cinema author is being felicitated, before that let me tell you what is the jury doing about the best writing on cinema. It honors critical scholarship research and film journalism through Swarna Kamal medals. Non-feature films recognizes short stories, socio-environmental documentaries, biographical compilations and technical achievements in non-fiction cinema, and feature films celebrating artistic performance and technical brilliance across narrative feature films in all Indian languages, including high honors like Swarna and Rajat Kamal medals, are the final epitome of these awards.
3: श्रोताओं, शीर्षक का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए हूँ, राज्य हमारे लिए है, कन्नड़ सिनेमा के दार्शनिक और राजनीतिक आयाम। श्रोताओं, यह पुस्तक कन्नड़ फिल्मों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि समाज, रणनीति, राजनीति, विचारधारा और दर्शन को समझने के माध्यम के रूप में देखती है।
2: The best book on cinema publisher is also now getting

0: Being felicitated. It is the Mirror Pustaka Publication House, represented by Ms. Soumya H. Publisher Mirror Pustaka receives the Swarna Kamal alongside the author for bringing this landmark film literature to life. Represented by Ms. Soumya H., the publishing house was praised for high editorial quality and dedication to film studies. Their work ensures that critical cinematic discourses reaches film scholars nationwide.
1: श्रोताओं, संजीव श्रीवास्तव को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके हिंदी फिल्म समीक्षक के रूप में दिए गए विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक लेखन के लिए दिया गया है। उनका काम भारतीय सिनेमा के सौहार्द शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और समकालीन फिल्म निर्माण को एक नई और गहरी समझ के साथ पाठकों के सामने रखने के लिए सराहा गया है।
0: Shri Sanjeev Srivastava takes home the Swarna Kamal for his insightful Hindi film criticism. His writings demonstrate a keen understanding of cinematic form, narrative nuances, and societal reflections in modern film. The next in the category is the non-feature films. The first mention is Chola Dora or Sui in Hindi. Director Shri Lakulesh Ghai receives a certificate and a special mention.
1: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म पश्चिम हिमाचल क्षेत्र में रहने वाले गद्दी समुदाय के जीवन, उनकी समृद्ध संस्कृति और उनकी अनूठी वेशभूषा पर आधारित है। फिल्म का मुख्य केंद्र गद्दी समुदाय की पहचान माना जाने वाला पारंपरिक पहनावा चोला डोरा है। श्रोताओं,
0: Director Lakulesh Ghai receives a special mention certificate for his subtle portrayal of traditional textile arts. The short film weaves a poetic visual thread around craft heritage and human emotion. The jury commended its tender observational technique. Next in the category is a special mention, Chola Dora or Sui, director Shri Jaimin Modi receiving a certificate.
1: श्रोताओं, इसी श्रेणी में अगला पुरस्कार मिल रहा है मलयालम फिल्म भद्रकाली नाटकम को। फिल्म भद्रकाली नाटकम को विशेष उल्लेख का पुरस्कार प्रमाण पत्र के रूप में दिया जा रहा है। यह फिल्म केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोक कला और अनुष्ठानिक कहानी कहने की कला को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर जीवंत और संरक्षित करती है।
0: In progress are the non-feature films awards. Next in line is the best script, Obur, Hindi and Kashmir. Scriptwriter Shri Faraz Ali receives a Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, फिल्म के लेखक और निर्देशक फराज अली ने इस फिल्म के नाम में ओबुर यानी कि बादल शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही अनोखे और भावनात्मक रूपक यानी मेटाफर के रूप में किया है। आधुनिक दुनिया में हमारा डेटा, हमारी तस्वीरें, वीडियो, यादें इंटरनेट के क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं। फिल्म के कश्मीरी ग्रामीण किरदारों के लिए इंटरनेट का यह क्लाउड पूरी तरह से नया और भ्रमित करने वाला है। वे मासूमियत में सोचते हैं कि उनका डेटा आसमान में तैरने वाले असली बादलों में चला गया है।
0: The next award in the category is Best Narration Voiceover, Little Planet, A Tale of Frogs in English. Narrator is Ms. Soundarya Jayachandran, who is receiving a Rajat Kamal. Soundarya Jayachandran takes the Rajat Kamal for her engaging, warm and articulate voice-over narration. Her vocal performance transforms a natural history film on amphibians into an enchanting story for viewers of all ages. The commentary brings clarity, humor and wonder to ecological science.
1: श्रोताओं, यह 44 मिनट्स की एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है जिसे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में 9 साल की लंबी अवधि में फिल्माया गया है।
0: नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, परत 41 डिग्रीज चा मागावर। म्यूजिक डायरेक्टर श्री शिवपाल सिंह कांग रिसीव्स अ रजत कमल। Shivpal Singh Kang wins for his evocative musical score that elevates the film's emotional landscape. Blending acoustic textures with traditional melodies, his composition provides a subtle sonic heartbeat to the narrative. The score elevates key visuals, beats without overpowering the storytelling.
1: श्रोताओं, आपको और क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए चलिए आपको सीधे मंच से जोड़ते हैं।
2: अधिकारियों की भावनाओं को एक मार्मिक कथा का रूप दिया है। बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए रजत कमल, तमिल फिल्म ब्लू के लिए श्री टी एस हरिहारा सूदन को प्रदान किया जा रहा है।

0: As you would have figured, for exceptional sound design and immersive sonic textures, wave, silence, and ambient shifts that evoke a child's wish to see a whale, blending hope, emotion, and the vastness of sea into a moving experience. Silver Lotus for the best cinematography for the film Life in Loom is presented to Sri Edmund Ransom.
1: When Britishers introduced the chemical dyes in India, every weaver's lived.
2: Sri Edmund Ransom ko apni bhavpurna kavyatmak prastutikaran ke liye puraskar diya ja raha hai jo Bharat ke prakritik drishyon ko ek jeevant canvas mein badal dete hain jahan manohar chhayankan gati hathkargha bunai ki kalatit kalatmakta aur bhavna ka utsav manati hai aur ab gair feature film shreni mein golden lotus award kartal dhwani ke sath taiyar ho jaye kyunki sarvashreshth nirdeshan ke liye हिंदी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के निर्देशक श्री आनंद एल राय प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल का सम्मान
3: आसमान छूती प्रतिमा के तौर पर विश्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा
0: The film is recognized for creative chronicle of the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming an engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, unity and national pride. Award for the best short film is being presented to Anushka Motion Pictures and Entertainments for the Marathi language film Hamsafar. On behalf of Anushka Motion Pictures and Entertainments, Sri Narendra Shantikumar Firodia receives the Silver Lotus.
2: एक करुणामयी सिनेमाई कथा के माध्यम से फिल्म हमसफर दर्शाती है कि कैसे साधारण वस्तुएं गहरे व्यक्तिगत महत्व की बन जाती हैं और उनका खोना एक गहरा खालीपन उत्पन्न करता है
0: Ladies and gentlemen, for the same film, director Shri Abhijit Arvind Dalvi is being awarded Silver Lotus. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal, how their loss opens a poignant void, sparking a heartfelt search for memory, identity, and emotional connection.
2: बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए जेवी प्रोडक्शंस को मूक फिल्म टच्ड एज वाटर के लिए रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है जेवी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म के एनिमेटर निर्देशक और निर्माता श्री जोशी बेनेडिक्ट
0: द फिल्म इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स सिंपल येट प्रोफाउंड आर्टिस्ट्री The film transforms grief into poetic animation, capturing love, loss, and hope through graceful visuals and extraordinary cinematic simplicity. The next award for the best non-feature film promoting social and environmental values goes to Hindi Rajasthani English language film Piplantri, a tale of eco-feminism. On behalf of Johnson Suraj Film International, Ms. Garima Singh is receiving the Silver Lotus.
4: ये जो क्षेत्र है पिपलांत्री पंचायत ये पूरी तरह मार्बल के खदानों के बीच में है
5: बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही है आपको दिख रहा है कि
6: श्रोताओं इसी कड़ी में सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है जॉनसन सूरज फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले बनी फिल्म पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म ने जिसे प्राप्त कर रही है मिस गरिमा सिंह यह फिल्म हिंदी राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषाओं में है इसे मिला है रजत कमल का सम्मान और साथ ही फिल्म के निर्देशक सूरज कुमार को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान श्रोताओं यह 84 मिनट्स की एक बेहद प्रभावशाली फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित पिपलांत्री गाँव की वास्तविक और प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है इस गाँव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनूठी और ऐतिहासिक मुहिम शुरू की थी
7: नेक्स्ट इन कैटेगरी इज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री राम नामी इन हिंदी प्रोड्यूसर बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत रिप्रेजेंटेड बाय मिस लिनेट डिमेलो शी इज गोइंग टू रिसीव

0: Rajat Kamal. Producer Lynette DeMello accepts that Rajat Kamal for backing this striking documentary on the Ram Nami sect of Chhattisgarh. The film documents a community that tattoos sacred names across their bodies as an act of devotion and social defiance.
1: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री राम नामी समुदाय पर केंद्रित है. यह समुदाय अपनी धार्मिक आस्था और पहचान को शरीर पर राम नाम का गोदन या टैटू बनवाकर व्यक्त करने के लिए जाना जाता है. फिल्म उनके विश्वास, परंपराओं और सामुदायिक जीवन को दस्तावेजित करती है.
0: एक्लेम डायरेक्टर भरत बाला गणपति रिसीव्स द रजत कमल फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री राम नामी इन हिंदी. नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट आर्ट्स कल्चर फिल्म मैं निदा इन हिंदी. Producer is Sampreshan Multimedia, represented by Shri Atul Gangwar, and he is going to receive a Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, मैं निदा प्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. यह फिल्म सिर्फ निदा फाजली की जीवनी नहीं बल्कि उनके विचारों, संवेदनशीलता और कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश है. उनके शेर दिल को छू जाते हैं. क्या खूब लिखा है उन्होंने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता. और जब वे कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, तो ऐसा लगता है मानो पुरस्कार विजेताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराह रहे हों और भीड़ का हिस्सा नहीं बने बल्कि अपना अलग रास्ता चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं.
0: नेक्स्ट इन लाइन इन द नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी इज बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन फिल्म काकोरी इन हिंदी. Producer KSR Brothers and Minty Mishra, represented by Shri Jaswinder Singh, he is going to receive a Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, इस फिल्म का विषय 1920 के दशक के ब्रिटिश भारत की ऐतिहासिक काकोरी रेल कार्यवाही है. यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी दौर से जुड़ी हुई है. फिल्म में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों से जुड़े घटनाक्रम को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया गया है.
0: द सेम फिल्म बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन फिल्म काकोरी रिसीव्स द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी एंड टू रिसीव द अवार्ड कम्स श्री कमलेश कुमार मिश्रा. ही इज गोइंग टू रिसीव द रजत कमल. Director Kamlesh Kumar Mishra wins for his meticulous historical research and sharp narrative pacing. He brings revolutionary figures to life with clarity, avoiding sensationalizing while honoring sacrifice. The jury praised its educational value and dramatic tension.
1: श्रोताओं, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है संथाली भाषा की फिल्म अंगेन को, और इसके लिए निर्देशक रवि राज मुर्मू को स्वर्ण कमल से अलंकृत किया जा रहा है. श्रोताओं, इस फिल्म में एक लोक कथा का उपयोग आधुनिक सामाजिक मुद्दों, विशेषकर महानगरों की ओर युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन यानी माइग्रेशन को दिखाने के लिए है. यह दर्शाती है कि कैसे विकास की अंधी दौड़ युवाओं को उनकी मूल भाषा, संस्कृति और पहचान से दूर कर देती है.
0: Next in line is the filmmaker Sumira Roy, claiming the top non-feature award, the Swarna Kamal, as both producer and director. Film Bhangar explores urban waste, informal labor, and human resilience with unyielding cinematic power. The film was unanimously hailed by the jury as a masterpiece of modern non-fiction storytelling.
1: श्रोताओं, भंगार फिल्म का केंद्र कबाड़ और उसे इकट्ठा करके जीविका चलाने वाले लोगों की दुनिया है. फिल्म ऐसी वस्तुओं और लोगों पर ध्यान देती है जिन्हें समाज अक्सर महत्वहीन या बेकार मानकर नजरअंदाज कर देता है. यह फिल्म कबाड़ बीनने और उसका पुनर्चक्रण करने वाले लोगों के जीवन, श्रम और रोजगार की वास्तविकता को दर्शाती है.
0: And now...

0: Next in line, we now go to feature films awards in various languages of India. Such enigmatic and charismatic is the charm of Indian cinema that I cannot help but tread into my co-commentator Neelam's territory and recite these few couplets in Hindi. Zindagi e aina hai, aur cinema us aina e vajood par chamakti hui roshni. Har parda ek daastan kehta hai, har tasveer mein ek fasana hai. Kahin ashk hai, kahin muskurahat, kahin ek khwab suhana hai. Aur inhi daastanon ki darkhanon mein gungunata hamara Hindustan hai. Let's now go on to the feature films category. Special mention about two films. Maya Jahan in Thalem, Tamil. Sound mix engineer Shri Suren Ji would be now receiving a certificate. Sound engineer Suren Ji receives a special mention certificate for his delicate acoustic mixing in Maya Jahan. His sound mix captures the natural ambience of rural landscapes and intimate dialogue. The subtle sound design deepens the film's emotional intimacy. Second in the category of special mention is the film Captain Miller in Tamil. Actor Shri Dhanush is coming on to the stage to receive this award. Superstar Dhanush earns a special mention certificate for his intense, raw and fiery performance in Captain Miller.
1: श्रोताओं, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों के पुरस्कार का समय आ गया है, जिसमें दो फिल्मों को चुना गया है, तुलु फिल्म और गढ़वाली फिल्म। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार मिला है इम्बू को, जिसके निर्माता पिक्चर स्टूडियोज की ओर से श्री प्रशांता कुमार बी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान, और फिल्म के निर्देशक शिवा ध्वज शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म आज के डिजिटल युग में समाज के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है, जो मुख्य रूप से तीन संदेश देती है। केवल स्मार्टफोन खरीद लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग की समझ होना बेहद जरूरी है। यह फिल्म साइबर स्कैमर्स के तौर तरीकों को उजागर करती है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है। कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक तकनीक जहां एक तरफ विकास का जरिया है, वहीं अगर उसे बिना सोचे समझे अपनाया जाए तो वह हमारी पारंपरिक जीवन शैली और मानसिक शांति को कैसे बर्बाद कर सकती है।
0: प्रोड्यूसर सुनील नायक टेक्स होम द रजत कमल फॉर ब्रिंगिंग गढ़वाली कल्चर टू द नेशनल स्टेज। ढोली फिल्म सेंटर्स अराउंड ट्रेडिशनल फोक म्यूजिशियंस एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन द हिमालयन हिल्स। द फिल्म वाज कमांडेड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रिजर्वेशन वैल्यू।
1: श्रोताओं, ढोली की कहानी उत्तराखंड की पारंपरिक ढोल सागर यानी ढोल बजाने की प्राचीन कला और इसे जीवित रखने वाले ढोली समुदाय के संघर्ष पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य सामाजिक या धार्मिक ढोल के बिना पूरा नहीं होता।
0: बेस्ट घरवाली फिल्म ढोली डायरेक्टर श्री दिनेश पुंडलिक भोसले रिसीव्स अ रजत कमल। He wins for his sensitive portrayal of mountain life and artistic heritage. His direction captures breathtaking Himalayan landscapes alongside poignant human drama. The film gives a powerful voice to Uttarakhand's regional storytellers. And the next in line is Best Telugu Film, Kamiti Kurallovu. Producer Pink Elephant Pictures and Sri Radha Damodara Studios, represented by Miss Niharika Konidela.
1: श्रोताओं, कमेटी कुरोल्लू आंध्र प्रदेश के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है, जिसमें बचपन के दोस्तों के बीच के गाढ़े रिश्तों, आपसी मनमुटाव, ग्रामीण राजनीति और समय के साथ बदलते सामाजिक समीकरणों की कहानी कहती है।
0: The same film also receives the Best Director Award. Shri Yadu Yuamsi wins for his dynamic ensemble staging and nostalgic narrative framing. He manages a large cast of newcomers while maintaining crisp dramatic control. His direction captures authentic rural warmth and emotional coming-of-age moments. Next in line is the Best Odia Film, Lahari. Producer Jilik Motion Pictures, represented by Miss Jilik Bhattacharji, is on the stage to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, इसी पिक्चर के निर्देशक अमृत्य भट्टाचार्य को भी रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है। यह एक बेहद प्रशंसित और समीक्षकों द्वारा सराही गई ओडिया फीचर फिल्म है। इस फिल्म को कलात्मक सिनेमा के क्षेत्र में अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

0: Lahari delves into human relationships, artistic passions, and coastal life realities. The film represents a bold aesthetic leap forward for contemporary Odia cinema. The film stands as a triumph of independent artistic cinema. Next in line is the best Marathi film, Mukkam Post Bombil Vole Wadi. Producer Vivek Films, represented by Shri Bharat Dilip Shitore. He is there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, यह फिल्म 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की एक मजेदार काल्पनिक कहानी है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर गलती से कोंकण के एक छोटे से गांव बॉम्बिलवाड़ी में आ जाता है। इसके बाद गांव के सीधे साधे लोग और एक स्थानीय नाटक मंडली मिलकर हिटलर का सामना अपने अनोखे और हास्यास्पद अंदाज में करते हैं, जिससे पूरी फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी पैदा होती है।
0: Next film in the language category is Best Manipuri Film, Sunita. Producer Skyline Pictures and Company, represented by Shri Yomanam Brojen Singh. Producer Yomanam Brojen Singh accepts the Rajat Kamal for backing this powerful social drama. Sunita highlights female resilience, social struggles, and cultural endurance in Manipur. The film brings vital stories from the Northeast to national prominence.
1: श्रोताओं, यह फिल्म श्रीमती मोइंगा मोइरांगदम सुनीता देवी के वास्तविक जीवन की सच्ची घटनाओं और उनके संघर्षों पर बनी एक बायोपिक है, जिसमें उनका अपनी दृष्टिहीनता से संघर्ष, शिक्षा के लिए दृढ़ता और पारिवारिक चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणादायक यात्रा दिखाई गई है।
0: डायरेक्टर श्री यमुनम अजीत सिंह ऑल्सो रिसीव्स द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द सेम फिल्म सुनीता. He wins for his realistic, compassionate, and directorial approach. He draws deeply affecting performances from his cast while depicting real social challenges. Next in line is the best Malayalam film, Feminichi Fatima, producer 1001 Stories and AFD Cinemas, represented by Shri Tamar Mon Karuanta Vallapil.
1: श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी फातिमा नाम की एक आम गृहिणी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने घर और समाज की पितृसत्तात्मक सोच और पाबंदियों से आजाद होने की कोशिश करती है। जूरी ने घरेलू पितृसत्ता पर इसके मजाकिया और सटीक कटाक्ष की सराहना की है।
2: फ्लोइंग वन जोवी फिल्म्स एलएलपी आरएस क्रिएशंस एंड कठपुतली आर्ट्स एंड फिल्म्स की तरफ से श्री शरद मित्तल को रजत कमल का सम्मान।
3: The story beautifully blends grief, love, and cultural identity with remarkable sensitivity. The film offers deeply rooted narrative, marking significant milestone for Konkani cinema. And the director of the film, Sri Radhesham Pipalwa, is receiving the Silver Lotus.
2: फिल्म मॉग असुम को एक ऐसी भावनात्मक कहानी के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, जो दुख, प्रेम और सांस्कृतिक पहचान की बेहद संवेदनशीलता से सामने लाती है। अपने जड़ों से जुड़ी ये फिल्म कोंकणी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
3: Also, the director of the film, Sri Agnello Braganza, being awarded with Silver Lotus.
2: मॉग असुम कोंकणी सिनेमा में अपनी अनूठी कहानी और भावपूर्ण अंदाज के कारण एक मील का पत्थर साबित हुई है। और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म का पुरस्कार फिल्म मिथ्या को प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री सुमंत भट्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए।
3: The film is recognized for its profound portrayal of childhood trauma, angst, grief, and fragile illusions of stability in fractured society. The award for the best Hindi film is awarded to Shrikant, produced by Super Cassettes Industries Private Limited, Shock and Cheese Films Production. Shri Bhushan Kumar receives the Silver Lotus.
4: What is your name, young man?
5: Sir, my name is Shrikant Bola.
2: सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत दृष्टिबाधित उद्योगपति की जीवनी पर आधारित एक प्रेरणादायक हिंदी फिल्म है, जो इंसानी जज्बे की जीत के गहन मानवीय चित्रण के लिए प्राप्त कर रही है राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करते हुए फिल्म के निर्देशक श्री तुषार हीरानंदानी।
3: श्रीकांत ट्रांसेंड्स द कन्वेंशंस ऑफ बायोग्राफिकल ड्रामा।

0: to deliver a story of hope with honesty and grace. The next award is for Best Gujarati Film, conferred to Maran, produced by Cineman Productions Limited, and Sri Amit Desai to receive the Silver Lotus.
1: Beauty and a Beast. Bhega Thai.
2: फिल्म मारन अन्याय का सामना करती महिलाओं के साहस, दृढ़ता और एकजुटता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है और समकालीन गुजराती सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी फिल्म के निर्देशक श्री अभिषेक जैन को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है।
0: The film is recognized for its bold exploration of gender violence and patriarchal oppression through a powerful narrative. Thank you, Honorable President and distinguished guests. May I now request Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, to address the gathering.

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कार्यक्रम में हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार, फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री जयराज, नॉन फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री असीम सिन्हा, बेस्ट फिल्म लेखन ज्यूरी के अध्यक्ष श्री ए चंद्रशेखर, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती गुजरात में पधारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया तथा आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। गुजरात गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। मित्रों, अगर सरदार पटेल न होते तो शायद जिस भारत को आज हम देखते हैं वो भी नहीं होता। सरदार साहब ने दृढ़ संकल्प से तत्कालीन रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके एक और अखंड भारत का निर्माण किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक और अखंड भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार साहब के महत्वपूर्ण योगदान को इस एकता नगर में लोह पुरुष सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण से यथा योग्य गौरव दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का एकता नगर में पहली बार आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की प्रेरक उपस्थिति में आयोजन हमारे लिए गर्व का अवसर है। आज एकता नगर में देश के फिल्म जगत का यह राष्ट्रीय सम्मान एक और संदेशा भी देता है। हमारी एकता जितनी विराट है उतनी ही हमारे सर्जकों फिल्म मेकर्स की सृजन शक्ति भी विशाल है। सिनेमा केवल मनोरंजन की ही नहीं परंतु समाज का प्रतिबिंब है, संस्कृति और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सक्षम मंच है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई है। इस पहचान को और गति देने में भारतीय सिनेमा उद्योग सॉफ्ट पावर की बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक फिल्म भाषा की सरहद पार कर सकती है, कलाकार करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं, एक कहानी विश्व को भारत के साथ जोड़ सकती है। ऐसी ही विविध भाषाओं, संस्कृति

0: और भारत के कोने कोने में मौजूद प्रतिभाओं में से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मानित करने का आज का अवसर है। श्री ममूटी, श्री कार्तिक आर्यन, श्रीमती यामी गौतम हमारे बाल कलाकारों और इन प्रेरणादायी कहानियों के पर्दे पर साकार करने वाले सभी कलाकारों, निर्देशकों, लेखक और टेक्नीशियनों को अभिनंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह गुजरात के लिए दुगुनी खुशी का अवसर है क्योंकि गुजराती फिल्म मारण को भी बेस्ट गुजराती फिल्म का पुरस्कार मिल रहा है। सिनेमा जगत के इतने दिग्गज रचनाकारों का गुजरात की धरती पर संगम केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि नई रचनात्मक यात्रा की शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उद्योग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी तथा सेमीकॉन जैसे इमर्जिंग सेक्टर तथा टूरिज्म में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अब इस डेवलपमेंट जर्नी में क्रिएटिव इकोनॉमी को भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने की मंशा है। गुजरात के पास प्रकृति और विरासत का अद्भुत खजाना है। कच्छ का सुंदर सफेद रण है, नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी पवित्र नदियाएं हैं, गिरनार और सापुतारा जैसे रमणीय पर्वत हैं, एशियाटिक लायन और गिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एट्रैक्शन है, धौलावीरा और लोथल जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो देश के सबसे लंबी 2300 किलोमीटर से अधिक की समुद्री तटरेखा भी गुजरात के पास है। गुजरात अपनी पौराणिक विरासत, सदियों पुरानी परंपराएं, अनूठी संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध गरबा, लोक मेले और उत्सवों से समृद्ध है। गुजरात के अद्भुत लोकेशन के कारण ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर, सत्य प्रेम की कथा, कसुम्बो, काइपोचे, फोर्स 3 और लालो जैसी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के सभी निर्माताओं और निर्देशकों को हमारा निमंत्रण है, गुजरात के इन विविधपूर्ण पर्यटन लोकेशन का अनुभव कीजिए और अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात को डेस्टिनेशन बनाइए। गुजरात फिल्म निर्माताओं के लिए रिक्वायर्ड परमिशन, फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रोड्यूसर फ्रेंडली अप्रोच जैसे इनिशिएटिव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात को फिल्म प्रोडक्शन तथा ओटीटी के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने के उद्देश्य गुजरात सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है। हमारा प्रयास है कि गुजरात में फिल्मों के शूटिंग लोकेशन से आगे बढ़कर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग क्षेत्र का पूरा इकोसिस्टम बने। हम एक ऐसी संगीन संरचना बनाना चाहते हैं कि गुजरात का युवा अपने शहर या गांव में रहकर वर्ल्ड क्लास फिल्म, एनिमेशन, वीएफएक्स या डिजिटल कनेक्ट पर काम कर सके। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के आयोजन से गुजरात की यश कीर्ति में एक नया मोरपंख जुड़ा है। हमें इस अवसर का सौभाग्य देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने में गुजरात को अग्रेसर रखने में आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त हो ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
1: श्रोताओं, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के संबोधन के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है और प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसकी श्रेणी में अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का।
2: द फिल्म इज रायन, प्रोड्यूसर सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, रिप्रेजेंटेड बाय मिसेस कावेरी कलानिधि, शी वुड बी देयर टू रिसीव द रजत कमल।
1: श्रोताओं, रायन निर्माता सन

0: Dhanush claims his second award of this ceremony, winning Best Director for guiding his 50th landmark film. His directorial vision crafts intense action, deep brotherhood ties, and relentless moral conflict. His staging proves his commanding authority both behind and in front of the camera. The next category is Best Bengali Film. Chalchitra Ikon, producer Anjan Dutt Production, represented by Shri Neel Dutt.
1: Shrotao, यह फिल्म निर्देशक अंजन दत्त की खुद की यादों और उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है। यह फिल्म उनके द्वारा उनके गुरु भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता मृणाल सेन के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें समर्पित एक भावुक श्रद्धांजलि है।
0: प्रोड्यूसर नील दत्त एक्सेप्टेड द अवार्ड फॉर दिस डीपली पर्सनल होमेज टू लेजेंडरी ऑशियर मृणाल सेन। The film explores the mentor-disciple relationship in 1980s Kolkata film circles. It is also receiving the Best Director Award for the same film, Chalchitra Ikon. And here comes Shri Anjan Dutt. Veteran artist Anjan Dutt wins for directing a deeply reflective, semi-autobiographical tribute to his mentor.
1: Shrotao, ab shreni mein sarvashreshth Asamiya film mein Jui Phool ko diya ja raha hai samman. इसके निर्माता श्री जादूमोनी दत्ता, मिस रीता दत्ता और मिस नंदिनी शर्मा दत्ता। मिस रीता दत्ता रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। इसे फिल्म के निर्देशक श्री जादूमोनी दत्ता को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म एक असमिया विधवा और एक नागा महिला के बीच के मानवीय रिश्तों और मातृत्व की एक बेहद संवेदनशील कहानी को दर्शाती है।
0: बेस्ट असमिस फिल्म जॉयफुल रिसीव्स अवार्ड्स फॉर प्रोड्यूसर एंड आल्सो फॉर द डायरेक्टर। श्री जादूमणि दत्ता इज आल्सो देयर टू रिसीव द अवार्ड एज अ डायरेक्टर। It is one for guiding Juiful with deep compassion and documentary-like realism. The camera work focuses on ordinary lives caught in territorial tensions, finding hope in shared humanity. The direction delivers a quiet yet unforgettable emotional impact. Next in line is the best action direction film Maharaja in Tamil language wins the best action direction film award. Stunt choreographer Shri Anil Arasu will be there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन में तमिल पिक्चर महाराजा के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिल रहा है अनिल अरसु को। इन्हें मंच पर पुरस्कार ग्रहण किए करते हुए हम देख सकते हैं।
0: The next in line is the award for the best choreography, and in Hindi is 3-2 film choreographer Shri Vijay Ganguly comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं, गीत आज की रात के लिए विजय गांगुली को मिल रहा है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड। सिनेमा में कभी एक धुन कहानी कहती है, कभी एक शब्द और कभी एक कदम।
0: The sequence became a national pop culture moment, demonstrating choreography's power in mainstream cinema. Here's Vijay Ganguly receiving the Rajat Kamal. Next in line is the award for best lyrics in Hindi for the film Maidan. Lyricist Shri Manoj Muntashir receives the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, मैदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मनोज मुंतशिर को दिया जा रहा है पुरस्कार। फिल्म में यह गाना कठिन परिस्थितियों में हौसला और लचीलापन बनाए रखने की भावना को दर्शाता है।
0: द पोएटिक लिरिक्स दैट कैप्चर नेशनल प्राइड एंड स्पोर्टिंग ग्रेट मनोज मुंतशिर कम्स ऑन द स्टेज एंड रिसीव्स द अवार्ड फॉर हिज लिरिक्स इन द फिल्म मैदान। नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड स्कोर अमरन फिल्म तमिल। म्यूजिक डायरेक्टर श्री जीवी प्रकाश कुमार ही इज देयर टू रिसीव द अवार्ड ऑन स्टेज।
1: फिल्म अमरन, तमिल फिल्म अमरन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जी वी प्रकाश कुमार के लिए को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान।
0: द पावरफुली एंड इमोशनली चार्ज बैकग्राउंड स्कोर रियली टचेस द हार्ट। फिल्म अमरन म्यूजिक डायरेक्टर श्री जी वी प्रकाश कुमार रिसीविंग द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड। नेक्स्ट इन लाइन इज द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स फॉर द फिल्म Article 370, Music Director Shri Shashwat Sachdev comes on stage to receive this award.
1: श्रोता

0: संगीत निर्देशन और गीत में अब मिल रहा है आर्टिकल 370 के लिए गीतों के संगीत निर्देशन के लिए शाश्वत सचदेव को रजत कमल का सम्मान.
1: The compositions of this film combine modern orchestral arrangements with patriotic vocal lines. The songs elevate the film's narrative momentum without distracting from the tension. Next in line is the category Best Makeup for Kamiti Kurollu Telugu Film. Makeup artist Shri Pasupuleti Ravi Kumar comes on stage to receive the award.
0: Shrotao, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई नाम शायद फिल्म देखते समय दिखाई नहीं देते, लेकिन पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है उसकी नींव इन्हीं लोगों के काम से तैयार होती है. और सर्वश्रेष्ठ मेकअप कमेटी कुरुलू के लिए पी रवि कुमार को मिलता है रजत कमल का सम्मान.
1: द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू. तेलुगु फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री शीतल इकबाल चंद शर्मा रिसीव्स द अवार्ड. शीतल इकबाल चंद शर्मा विंस फॉर क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर अटायर रूटेड इन रस्टिक टेक्सचर्स. हिज डिजाइन्स गिव डिस्टिंक्ट विजुअल आइडेंटिटी टू राइवल फैक्शंस एंड रीजनल कल्चरल अटायर. द कॉस्ट्यूम्स प्लेड अ मैसिव रोल इन शेपिंग द फिल्म्स आइकॉनिक विजुअल स्टाइल. द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अगेन Pushpa the Rule Part 2, Telugu costume designer Miss Dipali Noor also receives the co-award.
0: Shrotao, Sarvashreshth costume design ke liye do designers ko sammanit kiya gaya hai. Pushpa the Rule Part 2 mein Dipali Noor aur Pushpa the Rule Part 2 ke liye hi Sheetal Sharma ko Rajat Kamal se sammanit kiya gaya hai.
1: Next in line is Best Production Design. Kalki 2898 AD in Telugu production designer Shri Nitin Zihani Chaudhary receives the award for this film Kalki 2898 AD best production design.
0: Shrotao, sarvashreshth production design ke liye jo Tamil mein bani hai movie Kalki 2898 AD Telugu movie Nitin Zihani Chaudhary ko mil raha hai Rajat Kamal ka samman.
1: और आइए अब आपको स्टेज पे ले चलते हैं वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है.
2: द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज मास्टरफुल क्राफ्टिंग ऑफ पेस नैरेटिव फ्लो इमोशनल डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्स एक्शन सीक्वेंसेस.
3: और अब बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड हिंदी फिल्म भूल भुलैया पार्ट 3 के लिए श्री मानस चौधरी को प्रदान किया जा रहा है. आप पा रहे हैं रजत कमल.
2: The sound design serves as a vital narrative and psychological tool that enhances the film's horror beyond conventional jump scares through the use of reverberant echoes. Ladies and gentlemen, the award for the best screenplay writer original goes to Shri Bandareddy Sukumar for Telugu film Pushpa the Rule Part 2. Shri Sukumar is being conferred with Silver Lotus. The film presents a compelling and intricately crafted screenplay that masterfully weaves character, conflict, and emotions into a powerful narrative.
3: Best screenplay writer adapted ka puraskar Marathi film Swargandhar Sudhir Phadke ke liye Shri Yogesh Shivram Deshpande prapt kar rahe hain pratishthit Rajat Kamal.
4: Je majha manala bhavta te majha sangeetatun majha galyatun utarta.
5: Tumcha samor yet ahe Sudhir Phadke.
2: For outstanding achievement in adapted screenwriting, authentic character development, and the profound emotional and dramatic impact of real-life legendary singer.
3: Sarvashreshth screenplay lekhan samvad ke liye Telugu film Lucky Bhaskar ke dialogue writer Shri Venki Atluri ke liye Rajat Kamal.
6: Na peru Bhaskar Kumar. Na jeetam 6,000 rupayalu. బోర్డర్లైన్ దరిద్రంలో బ్రతుకుతున్నా నేనే కావాలని నన్ను చేసుకుంది.
2: ద డైలాగ్స్ దట్ బ్లెండ్

0: The luminous black and white cinematography transforms light and shadow into powerful storytelling tools.
1: सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए श्री अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए रजत कमल का सम्मान।

0: गीत नवसाची गोराई माजी में उनकी शक्तिशाली प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत में निपुणता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण, पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी।
1: भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मान्य श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मान्य डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री चंचल कुमार जी, फीचर फिल्मों की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री जयराम जी, नॉन फीचर फिल्मों के जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री असीम सिन्हा जी, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री ए के चंद्रशेखर जी, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले माननीय श्री अनंत नाग जी, फिल्म जगत के महानुभाव तथा देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं, भाइयों और बहनों, आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, फिल्म पुरस्कार लगभग दिल्ली में होते थे। पहली बार मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से बाहर प्रथम बार इस फिल्म पुरस्कार को स्थानांतरित किया, तो वो भी गुजरात में किया, और गुजरात में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वास्तव में 562 रियासतों में बटा देश आजाद हो भी गया था। यदि वो इन खंडों में बटा होता तो आज भारत कैसा होता अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे लौह पुरुष जिनके व्यक्तित्व को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो मान दिया, वो सम्मान दिया, जिसके वो सही अर्थों में अधिकारी थे, आज यह बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थल पूरे देश के लोगों के लिए भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का केंद्र बन चुका है। आप फिल्म जगत के लोग हैं, आप अपनी विधा के द्वारा जिस सरलता से, जिस सहजता से समाज की हर वर्ग की चुनौतियों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज फिल्म जगत ने भारत की सभी भाषाओं को समृद्ध करने का काम किया है, भारत की राष्ट्रभाषा से देश को जोड़ने का काम किया है, लोगों को एक दूसरे से पहचान दिलाने का काम किया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। एक छोटा सा निवेदन भी मैं जरूर करूंगा, भाई और बहनों, हम मनोरंजन की दुनिया में आज बहुत तनाव में दुनिया गुजर रही है, बहुत डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी के साथ गुजरात प्रांत एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें नेतृत्व है। आज हमारी युवा पीढ़ी, हम सब लोग हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमजोर हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको कोई सुनता नहीं था, आज से 40 वर्ष पहले इस देश में कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, पेनक्रियाज फेल होती कोई जानता नहीं था। हम जितने बैठे, किसी के पिताजी ने कभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज हम सब लाइन में बैठे हैं। 20-20 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं, पेनक्रियाज फेल हो रही, कारण के बिना कार्य नहीं होता। और इसका बहुत बड़ा कारण आज हमारा जो पर्यावरण है वो तेजी से बिगड़ रहा है। आपने और हमने फिल्मों के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग की ओर लोगों को प्रेरित करने का काम करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी तरीके आ सकें वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसा खान पान जिससे लोग स्वस्थ और निरोग होकर के जी सकें। आज भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं। यदि भारत अपनी पुरातन सांस्कृतिक परंपरा, जो सारे देश में एक जैसी है, आपके माध्यम से भारत की संस्कृति के वो मूल सूत्र जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर जुड़े हुए थे, जो शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय पर जुड़े थे, हमारी फिल्मों के माध्यम से मार धाड़ का रूप थोड़ा सा हल्का करके लोगों में एकता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, और हम एक दूसरे के काम आ सकें और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ एक एक मेरे देश का व्यक्ति आगे बढ़े। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आज जो युवा पीढ़ी के लोग मंच पर आए, भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने जिनको आज बड़े गर्व के साथ सम्मानित किया है, इस दिशा में यदि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित कर पाए, निर्व्यसनी कर पाए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सोचने का पैदा कर पाए, ये फिल्म जगत के माध्यम से, क्योंकि वो लोगों के दिलों में उतरती है, सहज भाव से आप कठिन विषय को सरल बनाकर लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मैं पुनः आप सब गुजरात की इस पावन धरा पर आए आपका अभिनंदन करते हुए आपके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं और सबको, पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के संबोधन को, और इसके बाद कार्यक्रम फिर से पुरस्कार वितरण की ओर बढ़ चला है। माननीय राष्ट्रपति जी अन्य डिग्निटरीज के साथ पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर पधार गई हैं। क्रम चल रहा है संगीत और गायन के पुरस्कार का। अब समारोह में संगीत का रंग घुल गया है। सिनेमा की कहानी आंखों से शुरू होती है, लेकिन अक्सर दिल तक पहुंचती है संगीत के रास्ते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है वैकोम विजय लक्ष्मी को फिल्म एआरएम के लिए, जो मलयालम फिल्म है, और गीत है अंगुवाना कोनिलु।

0: విజయలక్ష్మి ఆన్స్ రజత్ కమల్ ఫర్ అవర్ కమాండింగ్ పిచ్ పర్ఫెక్ట్ వోకల్ డెలివరీ ఆఫ్ అంగు వాన కోనీలు. Her unique vocal timbre adds mythic scale and emotional depth to a period fantasy adventure. Her performance stands out as a high point in film music. Next in line is Best Child Artist, Onko Ki Kothin in Bengali. Child Artist, Miss Geeta Shri Chakravarti receives the award.
1: Shrotao, category hai Sarvashreshth Bal Kalakar ki aur aapko bata de कि ये नई पीढ़ी मंच पर खूबसूरत दिखाई दे रही है और इसमें दो पिक्चरों के लिए बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है. टोटल 5 बच्चों को इसमें पुरस्कार मिल रहा है, जिसमें अंकों की कोथोन यानी क्या गणित कठिन है के लिए जो बंगाली फिल्म है उसके लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है. सबसे पहले आ रही हैं गीताश्री चक्रवर्ती जो अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं.
0: यंग गीताश्री चक्रवर्ती रिसीव्स रजत कमल फॉर अ हार्ट वार्मिंग कंप्लीटली नेचुरल परफॉर्मेंस. शी पोर्ट्रेज अ स्कूल चाइल्ड डीलिंग विद क्लासरूम प्रेशर्स एंड चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी विद इनोसेंस. हर स्क्रीन प्रेजेंस ब्रिंग्स जेन्युइन चार्म टू द बंगाली फीचर. नेक्स्ट इन लाइन इज द चाइल्ड आर्टिस्ट तपोमोय देव. तपोमोय देव शेयर्स टॉप चाइल्ड आर्टिस्ट ऑनर्स फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड विटी परफॉर्मेंस. हिज कॉमिक टाइमिंग एंड अनइनहिबिटेड एक्टिंग bring light-hearted energy to child education themes. The jury praised his effortless comfort in front of the camera. And third in line, best child artist, Onko Ki Kothin in Bengali is Shri Riddhiman Banerjee.
1: Shrotao, 35 Chinna Katha Kadu Telugu film ke liye Arun Dev Pothula ko bhi mil raha hai Rajat Kamal ka samman. Aur movie Mithya, yani Kannad movie Mithya ke liye अतीश एस शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का सम्मान. आज इन छोटे कलाकारों की आंखों में जो चमक है शायद वही कल भारतीय सिनेमा की पहली किरण बनेगी.
0: श्री अरुण देव पोथुला विंस रजत कमल फॉर पोर्ट्रेइंग अ यंग बॉय स्ट्रगलिंग विद स्कूल मैथमेटिक्स. हिज परफॉर्मेंस कैप्चर्स फ्रस्ट्रेशन इनोसेंस एंड डिटर्मिनेशन विद एब्सोल्यूट सिंसियरिटी. ही एंकर्स द फिल्म्स नैरेटिव हार्ट alongside veteran actors. And next in line is the child artist Shri Atish S. Shetty. He is receiving the Best Child Artist Award for the Kannada film Mithya. Atish S. Shetty earns national acclaim for his hauntingly quiet portrayal of an 11-year-old orphan. Handling grief, confusion and subtle acceptance without dramatic melodrama, his eyes carry the film's emotional weight. His performance is a masterclass in child acting. Next in line is the best actress in a supporting role. Kannada film Mithya, supporting actress Miss Roopa Shri Varakadi receives the Rajat Kamal.
1: Shrotao, Sarvashreshth Sahayak Abhinetri ka Puraskar do Abhinetriyon ko mila hai. Kannada film Mithya ke liye Roopa Shri Varakadi ko milta hai Rajat Kamal ka samman. Aur dusri film तमिल महाराजा के लिए सचना नामिदास को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान. श्रोताओं, दो अलग भाषाएं, दो अलग फिल्में, लेकिन सम्मान का मंच एक, यही भारतीय सिनेमा की असली तस्वीर है.
0: Both the supporting actresses Miss Roopa Shri Varakadi and Miss Sanchana Namidas have brought glitters to regional cinema for their supporting role in the films Mithya and Maharaja in Kannada and Tamil language respectively. Next, best actor in supporting role would be for the film Bhakshak in Hindi. Supporting actor, one and only, Shri Sanjay Mishra.
1: Shrotaon, agla puraskar hai Sarvashreshth Sahayak Abhineta ka, jo mil raha hai Sanjay Mishra ko. अब मंच पर एक ऐसा अभिनेता जिनके चेहरे को देखते ही दर्शक अनेक यादगार चरित्रों को याद कर लेते हैं. भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजय मिश्रा. संजय मिश्रा का सिनेमा सफर हमें बताता है कि अभिनेता की महानता केवल मुख्य भूमिका में नहीं होती, कभी कभी कुछ मिनट का चरित्र भी पूरी फिल्म की स्मृति बन जाता है. और आज उस अभिनय को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, रजत कमल का सम्मान.
0: Sanjay Mishra's performance as a weary yet courageous ground reporter brings quiet dignity, humor and moral resolve to an investigative journalism drama. His

0: Actor serves as the conscience of hard-hitting story, and the next in line is the best actress in a leading role award goes to Yami Gautam Dar for the film Article 370 in Hindi. Yami Dar wins the prestigious Best Actress Award for her intense portrayal of intelligence officer Zuni Haksar. She leads a political thriller with sharp authority, physical discipline and emotional restraint.
1: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी यामी गौतम एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अलग अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई. विकी डोनर से शुरुआत, फिर काबिल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2 अ थर्सडे और अब आर्टिकल 370.
0: नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल. नाउ द डायस इज शेयर्ड बाय टू ग्रेट चैंपियंस ऑफ एक्टिंग. फर्स्ट कम्स for the movie Chandu Champion in Hindi, actor Shri Karthik Aryan. He earns a historic shared award with the one and only Shri Mammootty for the film Brahmayugam in Malayalam.
1: Shrotao, manch par hai sarvashreshth abhineta Karthik Aryan, jinhone pyar ka panchnama se lokpriyata pai. Sonu ke Titu ki sweetie se majboot pehchan, Bhool Bhulaiya 2 se badi vyavsayik safalta aur ab Chandu Champion mein ek bilkul alag chunautipurn bhumika. Iske baad mil raha hai Mammootty ko best actor ka samman.
0: Screen legend Mammootty shares the best actor honor for his chilling performance as Koduman Potti. Operating in a monochrome folk horror setting, his vocal modulation, posture and sinister charm deliver an acting masterclass. It stands as another crown jewel in his multi-decade career. Next in line is the Best Direction Award for the Tamil film Amaran. Director Shri Rajkumar Periaswamy receives the Swarna Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को मिल रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान. अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन राजकुमार पेरियासामी. यह फिल्म भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन और उनकी वीरता पर आधारित है.
0: राजकुमार पेरियासामी इन द फिल्म अमरन, हिज डायरेक्टोरियल विजन ऑनर्स रियल लाइफ हीरोज विद एस्थेटिक ब्रिलियंस एंड डिग्निटी. ही बैलेंसेस ऑथेंटिक टैक्टिकल मिलिट्री एक्शन विद टेंडर पर्सनल स्टोरी टेलिंग. Next is the category of Best Children's Film. 35 Chinna Kathakodu, Telugu film, producer S Originals and Walter Productions, represented by Shri Shrujan Yarabolu.
1: Ji haan shrotao, bachchon ki duniya, unki jigyasa, unke sawal aur unki nazar se samaj ko dekhne ka prayas. Cinema ki yahi khoobsurti hai, woh har umr ke bachchon se लोगों से संवाद कर सकता है. सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को मिल रहा है रजत कमल नहीं स्वर्ण कमल का सम्मान.
0: इस फिल्म को दोनों कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है. द फिल्म इज रिसीविंग अवार्ड्स इन बोथ द कैटेगरीज फॉर प्रोड्यूसर एज ऑल्सो द डायरेक्टर. बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू, प्रोड्यूसर एस ओरिजिनल्स एंड वॉल्टर प्रोडक्शन, फॉलोड बाई डायरेक्टर श्री नंद किशोर इमानी. Director Nandakishore Imani shares the Swarna Kamal for directing an engaging narrative about overcoming learning fears. His light-hearted direction treats children with dignity while delivering a vital message on empathy in education. The next is the category of Best Feature Film promoting social values, and the film is Captain Miller in Tamil. Producer Satyajyoti Films, represented by Shri Thyagrajan T.G., comes on to receive the Rajat Kamal.
1: जी हाँ श्रोताओं, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म अब पुरस्कार मिल रहा है तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को. तमिल सिनेमा की इस फिल्म के निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन. इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान. मंच पर सम्मान ग्रहण किया जा रहा है.
0: Producer Thyagrajan accepts Rajat Kamal for his scale, epic tackling operation, caste barriers and freedom struggle story. Next in category is the best feature film promoting social values. Captain Miller in the film in Tamil receives the best director award. Shri Arun Matheshwaran comes on stage. He wins for crafting an uncompromising historical revolution drama. His staging blends cinematic scale with strong socio-political commentary. against systemic oppression. His direction delivers visceral excitement alongside meaningful themes.

0: श्रोताओं, अब बारी है लोकप्रिय एवं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, जो गया है तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को। बारी है उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के भविष्य और हमारी पौराणिक कल्पनाओं को एक विशाल सिनेमाई संसार से जोड़ने का प्रयास किया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है कल की 2898 AD, जिनके निर्देशक हैं नाग अश्विन सिंह रेड्डी, इन्हें जाता है स्वर्ण कमल का पुरस्कार।
1: द होलसम एंटरटेनर कल की 2898 AD रिसीव्स द अवार्ड फॉर बेस्ट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बोथ रिसीव्ड रिस्पेक्टिवली बाय श्री चलसनी अश्विनी दत्त एंड श्री नाग अश्विन सिंह रेड्डी। नेक्स्ट इन लाइन इज द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, स्वतंत्र वीर सावरकर इन हिंदी, डायरेक्टेड बाय श्री रणदीप हुड्डा, विंस द ऑनर्स।
0: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का अवार्ड मिला है रणदीप हुड्डा को, एक ऐसा नाम जिसे दर्शक अभिनेता के रूप में वर्षों से जानते हैं, लेकिन आज उनकी पहचान के साथ एक नया अध्याय जुड़ रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ने हाईवे, सरबजीत, रंग रसिया और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई, और आज कैमरे के सामने खड़ा होने वाला यही कलाकार कैमरे के पीछे की अपनी दृष्टि के लिए सम्मानित हो रहा है।
1: आफ्टर द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कम्स अ टर्न ऑफ द बेस्ट फीचर फिल्म, एंड दैट इज द हिंदी फीचर फिल्म आर्टिकल 370, प्रोड्यूसर जियो स्टूडियोज एंड B62 स्टूडियोज, रिप्रेजेंटेड बाय श्री आदित्य धर, is going to receive the award. Producer Aditya Dhar receives Indian cinema's top prize, the Swarna Kamal, for best feature film. The production delivers a high-stakes political thriller examining complex national intelligence operations. It was lauded for its high technical finish, research and cinematic tension. And next in line is the best feature film Article 370 Hindi director, Sri Aditya Suhas Jambale.
0: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 घोषणा हो चुकी है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल जाता है आर्टिकल 370 को। फिल्म के निर्माता हैं जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज, और इनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री आदित्य धर, और निर्देशक हैं आदित्य सुहास जम्भाले।
1: Director Aditya Suhas Jambale just received the Swarna Kamal for directing the best feature film of the year. He handled complex procedural drama with narrative clarity, suspense and technical discipline. And now all listeners, we have arrived at the sacred high point of this ceremony. The entire gathering of 1,000 dignitaries in this German dome has risen to his feet. A roar of standing applause would be following, reverberating across the pavilion. This is the moment for the conferment of Indian cinema's supreme lifetime honor, the Dada Saheb Phalke Award, instituted by the Union government in 1969 to commemorate Dundiraj Govind Phalke, the visionary patriarch who dared to dream that Indian faces can see the screen a world over. It carries the Swarna Kamal medallion, a hand-woven Kashmiri shawl, and a cash purse of 15 lakh rupees. And this year's Dada Saheb Phalke awardee is Shri Anant Nag.
0: जी हाँ श्रोताओं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार मिल रहा है अनंत नाग को। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने 1970 के दशक से लगातार अभिनय किया और 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उनका योगदान कई भारतीय भाषाओं तक फैला। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में अंकुर और लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक मालगुडी डेज शामिल हैं। उन्हें 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स और 5 कर्नाटका स्टेट बेस्ट एक्टर अवार्ड सहित सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें 2025 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।
1: For over 50 uninterrupted years, Anant Nag has stood as the definitive master of naturalistic acting, an artist who proved that true cinematic power does not require

0: स्थितियों से भारतीय सिनेमा की विरासत को गौरवान्वित करने वाले श्री अनंत नाग जी.
1: Shaped by the stage and fluent across languages as we learnt, Sri Anant Nag moved effortlessly between art house and mainstream cinema, bringing wit, warmth and quiet depth to every character he played.
0: और अब मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें.
1: एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस टू यू श्री अनंत नाग सर फॉर द ऑनर. वी आर ऑल ईगर टू हियर फ्रॉम यू. वुड यू काइंडली कम एंड शेयर योर थॉट्स विद अस.

0: परम सम्माननीय श्री अनंतनाथ जी आपके आत्मीय उद्गारों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर आपको पुनः हार्दिक बधाई। भारतीय सिनेमा में आपका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कर्तव्य ध्वनि से आइए एक बार पुनः करें श्री अनंतनाथ जी का हृदय से अभिनंदन। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति जी,
1: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभागीय सचिव श्री चंचल कुमार जी, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। मुझे पुरस्कार विजेताओं से बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। विशेष प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। आप सभी पुरस्कार विजेताओं से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी टीम के उन सभी सदस्यों तक भी मेरी सराहना अवश्य पहुँचाएँ जिनके योगदान से आपकी पुरस्कृत फिल्म का निर्माण संभव हुआ। मैं अनंतनाग को भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। बहुत छोटी उम्र से ही और रंगमंच के प्रख्यात लोगों के साथ जुड़ गए थे। अपने पहले नाटक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख भूमिका निभाई और दूसरी नाटक में गौतम बुद्ध की। फिल्म में उनका अभिनय थिएटर और सिनेमा के श्रेष्ठ आयामों का समन्वय प्रस्तुत करता है। फिल्मों का गंभीर अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि उनका अभिनय सहज यानी नेचुरल, संयत यानी रिस्ट्रेंड और प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक होता है और कलाकारों को भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। देवियों और स्वजन, यहाँ एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को तथा उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में हम भारत को के लोगों के

सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। 550 से अधिक रियासतों का विलय करके सरदार पटेल ने स्वाधीन भारत की एकता का समीचित सुनिश्चित किया था। एकता नगर का ये क्षेत्र भी एक रियासत का हिस्सा था। विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र और आकार देने वाले सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ शोभायमान है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत परिकल्पना को जाता है। आज पुरस्कृत फिल्मों में स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक भी शामिल है। देवियों और सज्जन, आज पुरस्कृत फिल्मों का एक संक्षिप्त विवरण मुझे दिया गया है। इन फिल्मों के बारे में जानकर मैं आप सबके योगदान से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं आप सबकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीयता के एक विशेष अध्याय को उजागर करने वाली फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये फिल्म देश की एकता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और उनके समाधान का जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। इस फिल्म की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सुश्री यामी गौतम धौर की मैं विशेष सराहना करती हूँ। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म भंगार जीवन और मृत्यु सार्थकता और निरर्थकता के जुड़े अनदेखा आयामों में अभिव्यक्ति करती है। ऐसे असाधारण विषय पर हृदयस्पर्शी फिल्म बनाने के लिए मैं निर्माता निर्देशक सुश्री समीरा राय और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री मम्मूटी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। इसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत करने का अवसर मुझे मिला था। देवियों सज्जनों, वर्ष 1970 में वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर भारत के इस महान सपूतों की स्मृति ने एक डाक टिकट जारी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हवाई अड्डे को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। आज पुरस्कृत फिल्मों में शामिल स्वातंत्र्य वीर सावरकर उनकी असाधारण जीवन गाथा के प्रति एक कलात्मक श्रद्धांजलि है। इस फिल्म के निर्देशकों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री रणदीप हुड्डा को मैं बधाई देती हूँ। कुछ लोगों की जीवन गाथा बहुत प्रेरक होती है। मैं मानती हूँ कि ऐसे प्रेरक व्यक्तियों पर बायोपिक बनाना बहुत सराहनीय कार्य है। बचपन से खेल जगत के प्रसिद्ध होने का सपना देखने वाले भारतीय सैनिक श्री मुरलीकांत पटकार 1965 के भारत पाक युद्धों के दौरान घायल हो गए। गंभीर चुनौतियों के बावजूद अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर वर्ष 1972 में वे पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने थे। वर्ष 2018 में श्री पटकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके चरित्र को अपने अभिनय से जीवंत बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री कार्तिक आर्यन को मैं बधाई देती हूँ। भक्षक नामक फिल्म महिला सुरक्षा के अत्यंत गंभीर विषय पर समाज को जागरूक करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति समाज को कृतज्ञ रहना चाहिए। इस विषय की संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए फिल्म

की पूरी टीम को मैं विशेष साधुवाद करती हूँ। संताली फिल्म आंगेन के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने से एक उत्कृष्ट फिल्म को तो प्रोत्साहित मिल ही रहा है।

0: तथा बाल कलाकारों को पुरस्कार देना देश के भविष्य में कलात्मक निवेश है। इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल कलाकारों आतिश शेट्टी, अरुण देव पथुला, त्रिध्यान बनर्जी, तपोमय देव एवं गीताश्री चक्रवर्ती को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में उल्लेखनीय है, परंतु समय की सीमा के कारण मैं कुछ फिल्मों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और सज्जनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले। मैंने पिछले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये अनुरोध किया था कि पूरी टीम के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब मेरे इन अनुरोधों पर ध्यान देते होंगे। देवी और स्वजनों, जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं, तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं। देश में बन रहे अच्छे फिल्मों के बारे में जानकर मेरा ये विश्वास और दृढ़ता है कि हमारी फिल्में गुणवत्ता यानी क्वालिटी के विश्व स्तरीय प्रतिमान बनाएगी। मैं आप सबके और फिल्म उद्योग के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: थैंक यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट। लेट अस ऑल राइज फॉर द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम।

श्रोताओं, हमने कलाकारों के चेहरों पर उपलब्धि की मुस्कान देखी और हमारे कानों में अब भी कुछ देर पहले गूंजती तालियों की आवाज है। आज हमने यहाँ पुरस्कारों का वितरण ही नहीं देखा, हमने सपनों को सम्मानित होते देखा, हमने मेहनत को मंच पर आते देखा, हमने भारत की अनेक भाषाओं को एक साथ तालियां बजाते देखा और शायद इसी को भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत तस्वीर कहा जा सकता है। अब मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।

0: స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 6 గంటల 29 సెకండ్లు దాటి 53 సెకండ్లు అయితే అవుతుంది. ఇప్పుడు 28th ఏషియన్ గేమ్స్ జపాన్ నుంచి అప్డేట్స్ అయితే వింటారు. వింటూనే ఉండండి 101.9.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त हैं अभिनव पुंशी और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट. और आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है वो यही रहेगी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत को एशियन गेम्स के अंदर इस वर्ष उसका पहला स्वर्ण पदक दिला दिया है. जी हाँ, द गोल्ड मेडल हैज फाइनली कम टू इंडिया थ्रू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हु वेंट ऑन टू डिफीट श्रीलंका टुडे बाय अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 147 रन्स. इंडिया हु वन द टॉस पहले वो चोज टू बैट फर्स्ट एंड बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने आज 216 रन बनाए उनके निर्धारित 20 ओवरों में, जिसको श्रीलंका जब चेज करने आया तो उनकी पूरी टीम सिमट गई सिर्फ 69 runs mein. And this goes to show that this has also been one of the biggest defeats that India has churned out to an opposition when it comes to the margin of runs jisse aaj Bharat ne Sri Lanka ko haraya hai. Abhinav, a very proud moment for every Indian.
3: It's a glorious moment aur bahut hi garv hai hum sab bhartiyon ko. aaj hamari Indian women's team Asia Cup bhi jeeta aur aaj Asian Games mein gold medal aur yaad dilaye bronze medal gaya Pakistan ko jinhone haraya Bangladesh ko. और आज लग रहा है कि थीम है इंडिया को श्रीलंका को हराने का, क्योंकि हॉकी में इंडिया ने श्रीलंका को 16-1 से हराया. इंडियन मेंस टीम आज तो पूरी तरह फायर पे थी, क्योंकि जुगराज के 4 गोल, अभिषेक और दिलप्रीत की हैट्रिक और हरमनप्रीत के 2 गोल की वजह से इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली अपना मैच जीता 16-1. इंडोनेशिया को हराया था 13-1 और अब 16-1, तो लग रहा है हॉकी टीम सीधा करेक्ट पाथ पे जा रही है.
2: इंडीड, हॉकी टीम करेक्ट पाथ पे जा रही है. उनसे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद भी थी और अच्छा लगता है देखकर कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी हमारी आशाओं पर खरा उतर रहे हैं. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुशु की दुनिया से भी आज एक बहुत अच्छी बड़ी ताजी खबर आ रही है, विच इज दैट इन भारत की वुशु स्टार जिसको हम कहते हैं रोशिबिना देवी अशोर्ड हरसेल्फ ऑफ अ थर्ड सक्सेसिव एशियन गेम्स मेडल आफ्टर स्टॉर्मिंग इनटू द वुमेन्स सैंडा 60 किलोग्राम semi-finals with a 5-0 victory over Macau, China's Chu Manson. आज के दिन वेल द सेमी फाइनल बर्थ गारंटीज रोशिबिना एट लीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. और आपको ये बता दें कि रोशिबिना देवी जो हैं वो पहले भी भारत की एक बहुत कहते हैं ना जगमगाता हुआ स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रह चुकी है. वो ऐसा सितारा है जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज ये वही शख्सियत है, ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया हुआ है 2018 में और सिल्वर मेडल भी दिलवाया हुआ है 2023 में. और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष उनका सफर एक पायदान ऊपर ही जाए अभिनव, एंड शी गोज ऑन टू गेट द गोल्ड फॉर अस ऑल्सो फॉर आर कंट्री.
3: Of course, Roshabina Devi making India proud. Unfortunately, Aryan, जिन्होंने कोशिश करी थी अपने क्वार्टर फाइनल मैच में, वो अपना मैच हारे 2-1, नहीं तो वो भी प्रवेश करते सेमीफाइनल्स में. गारंटीड होता इंडिया को एक ब्रॉन्ज, गारंटी तो इंडिया को ब्रॉन्ज होता अगर इंडियन विमेंस टीम हरा पाती टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल टीम्स इवेंट में नॉर्थ कोरिया को, मगर वो नहीं हो पाया. 3 सिंगल्स मैचेस हुए, 3-0 में क्लीन स्वीप करा नॉर्थ कोरिया ने. श्रीजाकुल्ला, यशवरी घोरपड़े और दिया चतले तीनों को हार का सामना कर रहा. मेंस टीम की भी याद दिलाएं, आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल्स में साउथ कोरिया से हारे 3-0. सो इट डिसअपॉइंटिंग डे इन टेबल टेनिस.
2: Right, and somehow that disappointment also seeped into the world of gymnastics, because gymnastics में अगर हम कहें तो a slight correction over there, did not seep into the world of gymnastics. Ulta, gymnastics ki taraf se ek choti si khushkhabri aapko deti hu filhal ke liye, which is that Praniti Nayak qualified for the world finals in artistic gymnastics with the score of 12.916. Ji haan, Praniti Nayak jo Bharat ki taraf se representation rakh rahi hai gymnastics ki duniya mein, ab dekhna hoga kyunki unko final mein apni jagah wo bana chuki hai ki wahan se kya वो इस सफर को एक कदम और आगे ले जाती है और भारत को मेडल दिला के लाती है, ये तो आगे ही पता चलेगा. लेकिन अभी के लिए खुशखबरी यही है कि प्रणति नायक भी क्वालिफाई कर चुकी है वॉल्ट फाइनल्स के अंदर आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स में विद अ स्कोर ऑफ 12.916. अभिनव,
3: और अगर हम कल की बात करें तो एशियन गेम्स में और गोल्ड मेडल्स की बरसात हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि 6:15 बजे एक्शन में होंगी या मनु भाकर और आई एस सरुचि यानी

0: टसिंग 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस टीम एंड इंडिविजुअल इवेंट, एंड उसके बाद हमारे पास एक और गोल्ड का मौका है क्योंकि 10 बजे आने वाली है मीराबाई चानू एंड साक्षी, आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी मीराबाई चानू गेट हर एशियन गेम्स मेडल व्हिच शी इज डेस्परेट फॉर.
1: Yes, I am. I'm definitely looking forward to that. And the good thing is that I should hopefully be covering that. And we'll be looking forward to the medals going up tomorrow. लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारे पास 6:30 बजे शाम के अपडेट्स में इतनी ही आपके लिए खबर थी. शाम को 7:30 बजे एक घंटे बाद फिर आपसे एक बार आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे और लेके आएंगे आपके लिए दिन का रैप अप और ऑल्सो ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द प्रीव्यू फॉर टुमारोज इवेंट्स. गुड बाय फॉर नाउ.

0: Welcome to the Asian Games update from Aichi Nagoya. And my name is Abhinav Punchi. And of course, today is a gold medal day because India has finally struck gold thanks to the Indian women's cricket team. They played outstandingly well against Sri Lanka in the final. Aur kya dhamakedar batting kari thi, 216 run banaye, with Smriti Mandana top scoring with 79 runs. Uske jawab mein Sri Lanka were all out. And for just a very, very average score of 69, aur India ko jeet mili 147 runs se. शानदार जीत और हमारी इंडियन विमेंस टीम ने अपना टाइटल डिफेंड करा है और गोल्ड मिला है इंडिया को. और इस गोल्ड की वजह से इंडिया जो 18वें पोजीशन में थे अब 8वीं पोजीशन में जा चुकी है मेडल्स टैली में विद वन गोल्ड एंड ऑफ कोर्स टोटल ऑफ 7 मेडल्स एज वेल 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज. Also, good news coming for India from the badminton circuit. A stunning victory. 3-0 versus Japan in the men's team competition. Ab India ne pravesh kare semi-finals mein. Aur semi-finals mein agar ab jate hain men's team badminton mein, to you are guaranteed a bronze medal. And semi-finals mein pravesh Roshibina Devi ne bhi kara hai Wushu Sando mein. उन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीता विद पॉइंट्स डिफरेंस और अब वो भी गारंटी है ब्रॉन्ज. याद दिलाएं रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगझो एशियन गेम्स में और 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो अगर कल की बात करी जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर डे क्योंकि सुबह 5:30 बजे ही जय मीना का सॉफ्ट टेनिस का क्वार्टर फाइनल मैच है. और अगर जय मीना प्रवेश करते हैं सेमीफाइनल्स में ही इज गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल. एंड देन उसके बाद शूटिंग में सबको इंतजार था. एवरीबडी हैज बीन वेटिंग फॉर मनु भाकर एंड हर शूटिंग बडीज टू कम एंड टेक टू द शूटिंग रेंज क्योंकि मनु भाकर ईशा सिंह और आईएस सुरुचि विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स टीम और इंडिविजुअल इवेंट में है. उसके बाद शूटिंग के स्कीट का भी थर्ड एंड फाइनल डे है मेन्स एंड विमेन्स इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स. And then we have the big one, 10 a.m. Meerabai Chanu, she wants gold. Kabhi Asian Games mein unhone nahi jeeta hai medal aur unko chahiye weightlifting ke 49 kg mein ek medal. And of course, humne baat ki thi kuch der pehle badminton ke bare mein aur 11:30 baje hoga India versus China. Ji haan, ye wohi match hai jo final tha pichli bari aur India hari thi wo final. Silver medal mera tha India ko, magar is bari India kya China ko hara payegi, kya final mein pravesh kar payegi, kyunki samna unka agar jeetengi semi final karegi Indonesia ya Thailand. Also aapko yaad dilayen kal kabaddi action bhi hai, India versus Iran at 8:30 a.m. 9:45 a.m. India versus Bangladesh men's kabaddi. And एक और बड़ा गोल्ड मेडल मैच है. अगर आप सुबह उठेंगे तो प्लीज 6:30 बजे इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग टीम को प्लीज चेयर करना बिकॉज उनके पास मौका है गोल्ड लाने का. और आज मेंस हॉकी टीम ने तो श्रीलंका की धुनाई कर दी. जी हाँ, 16-1 का स्कोर था आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया इन द फर्स्ट मैच 13-1. द मेंस हॉकी टीम वेंट बेटर एंड बीट श्रीलंका 16-1. जी, आज का थीम ऑफ द डे है श्रीलंका को हराना. विमेन्स क्रिकेट टीम ने करा और मेन्स हॉकी टीम ने भी करा. तो कल क्या इंडियन विमेन्स टीम थाईलैंड को हरा पाएंगी, 11:30 a.m. होगा इंडिया और थाईलैंड का वो हॉकी मैच. एंड हमने आपको मीराबाई चानू के बारे में तो बताया ही. वेट लिफ्टिंग में ऑल्सो ज्ञानेश्वरी यादव इज इन एक्शन इन द विमेन्स 53 kg बाउट, दैट्स एट 11:30 a.m. सो इट्स एन एक्शन पैक डे फॉर इंडिया एंड दे'ल बी होपिंग दैट सम मोर मेडल्स कम इंडियाज वे टुमारो बिकॉज टुडे वी हैव स्ट्रक गोल्ड. और Aichi Nagoya से एशियन गेम्स में अब इंडिया आगे बढ़ा है एंड होपफुली दे कीप ऑन गोइंग द राइट डे. ऑफ कोर्स देयर वर डिसअपॉइंटमेंट्स. टेबल टेनिस टीम्स, इंडियन विमेन्स टीम क्वार्टर फाइनल्स में हारे नॉर्थ कोरिया के साथ खिलाफ एंड प्री क्वार्टर फाइनल में इंडियन मेन्स टीम को हारना पड़ा साउथ कोरिया के खिलाफ. सो दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर द टेबल टेनिस कंटेंजेंट. दे'ल बी होपिंग दैट टुमारो द इंडियन कंटेंजेंट पुट्स ऑन अ फैंटास्टिक शो एंड डज वेल क्योंकि आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हमारी क्रिकेट टीम ने दी है. ऑफकोर्स याद दिलाई बॉक्सिंग से भी गुड न्यूज आई थी. जादूमणि सिंह ने हराया था चंद्र बहादुर थापा को, वो एडवांस कर चुके हैं राउंड ऑफ 16 में. सो गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम बॉक्सिंग विद जादूमणि सिंह ऑफकोर्स एंड वी आर होपिंग मच मोर बेटर न्यूज. वील बी बैक विद इट टुमारो एज वेल. और याद दिलाएं 10 बजे आपको सारा डिटेल रिपोर्ट आएंगे आज जो एशियन गेम्स में हुआ. सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर दैट. दैट्स ऑल फ्रॉम मी अभिनव पुंछी. इट्स बीन अ फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया. होपिंग फॉर मच मोर डेज लाइक दिस अहेड. एंड दैट्स ऑल. कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी फॉर मोर अपडेट्स.
1: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 విత్ ఆర్జే శివ. సో స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 7:35 దాటి 12 సెకండ్లు అయితే కావస్తుంది. మీరు వచ్చేసి లైవ్ ఇన్ ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారు. మనతో పాటు కాలర్ అయితే రెడీగా ఉన్నారు.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों 101.9 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। सामईन, प्रोग्राम का आगाज होगा हर्फ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश होगी जनाब मशकूर अहमद की। उसके बाद आप बेदारी कायनात टॉक में सुनेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी पे क्या असर डाला, और फिर हम नगमों के सफ़र पर रवाना होंगे यानी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुनेंगे प्यार भरे नगमे, और प्याम शब के साथ नए रंग इख्तिताम पजीर होगा। तहरीर पेशकश होगी जनाब जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: FM Rainbow 101.9।
1: सेहत और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए डॉक्टर के मशवरे सुनिए उर्दू प्रोग्राम नैरंग के डॉक्टर माइक पर हर जुमा रात 9:30 बजे आपके आकाशवाणी हैदराबाद रेनबो FM 101.9 पर।
2: दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपने दोस्त RJ उसामा को। दोस्तों, नैरंग प्रोग्राम में अभी आपने सुना हर्फ ताबिंदा और अब बारी है बेदारिये कायनात टॉक की। दोस्तों, इसमें हम आपको सुनाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने आज के दौर में इंसानों पे क्या असर डाला, पहले हमारा मुल्क कैसा था और साइंस और तरक्की की टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद इस मुल्क में और इस मुल्क के रहने वालों में किस तरह की तब्दीलियां आई हैं। तो लीजिए समाप्त कीजिए बेदारिये कायनात के तहत ये मालूमाती टॉक।
3: साइंस खुद हमारे बारे में और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में जानने की जस्तजू का नाम है। इसी जस्तजू ने हमारे दुनिया के बारे में तस्वुरात भी बदले और हमारी जिंदगियों को भी बदल दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने सिर्फ साइंसदानों पर ही नहीं असर डाला बल्कि इसका इन्हिसार सकाफती, माशी और सियासी अवामिल पर है। साइंस इंसानी इल्म की फतह है और इसकी तफहीम और इस्तेमाल से हमें मदद मिल सकती है। साइंस के ज़रिए ऐसी ऐसी ईजादात हुई हैं, अगर 15वीं सदी का इंसान आज ज़िंदा हो जाए तो दुनिया को पहचान नहीं सकेगा। इसने अपने ज़माने में बैलगाड़ियाँ देखी थी, अब हवाई जहाज़ ईजाद हो चुके हैं। वो रोगन के दियों से रोशनी हासिल करता था, अब बरक़ी कुमकुमों से दुनिया रोशन हुई पड़ी है। अंदरून मुल्क ही जाना होता था तो महीनों लग जाते थे, आज चंद घंटों में दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बआसानी पहुंच सकते हैं। वो तलवार से लड़ता था, अब ऐसे बम ईजाद हो चुके हैं कि आन ही आन में तबाही बरपा कर दें। अगर हम मौजजाती तौर पर 1900 से ज़हीन तरीन अफराद को आज की दुनिया में ले आएं, तो वो ये देखकर हैरत ज़दा हो जाएं कि जिन मसाइल ने इंसानों को सदियों से परेशान कर रखा था, हमने इनका बड़ी हद तक हल तलाश कर लिया है। सिर्फ 100 साल पहले लोगों को ये मालूम नहीं था कि विरासत अगली नस्लों को कैसे मुंतकिल होती है या एक खलिया कैसे तकसीम होकर पूरा जानदार बन जाता है। ये नहीं मालूम था कि एटम की अंदरूनी साख्त भी होती है, हालांकि खुद लफ्ज एटम का मतलब ही नाकाबिले तकसीम है। इन्हें ये मालूम नहीं था कि कायनात या जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। बहुत सी जदीद ईजादात की बुनियाद सदियों पुरानी दरियाफ्तों पर है। बुनियादी दरियाफ्तों के बदौलत हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं या कम से कम कोशिश कर सकते हैं। इन जवाबात ने हमारा

0: अपने मिशन अपने ही नहीं बल्कि गैर मुल्की सैटेलाइट भी खला में रवाना कर रहा है। हिंदुस्तान ने हाल ही में कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 को भेजा। इसके अलावा हिंदुस्तान इंसान को भी खला में भेजने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान में टीवी ब्रॉडकास्ट की शुरुआत 1959 में हुई और 1982 में रंगीन टेलीकास्ट की शुरुआत हुई। इसके बाद 1980 के अशरे को दूरदर्शन का दौर कहा जाता है। साल 1992 में टीवी चैनलों की शुरुआत हुई और फिर न्यूज़ चैनलों का भी दौर शुरू हो गया। हिंदुस्तान में आज 900 के करीब टीवी चैनल्स और 392 के करीब न्यूज़ चैनल्स हैं। कंप्यूटर की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे पहले कंप्यूटर 1952 में कोलकाता में लाया गया। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में लगाया गया था, मगर कंप्यूटर के दौर की हकीकी शुरुआत 1956 में हुई, जब पहला डिजिटल कंप्यूटर लगाया गया। आज हिंदुस्तान में ब्रॉडबैंड के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट की फराहमी की जा रही है। स्कूलों, अस्पतालों, कंपनियों, यहाँ तक के दुकानों तक कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर और लैपटॉप का यहाँ बड़ा बाजार मौजूद है और मुल्क के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली मोबाइल कॉल 1995 में की गई थी और जिस फोन पर कॉल की गई, आज हिंदुस्तान में तकरीबन हर हाथ में मोबाइल है और ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हिंदुस्तान में मोबाइल इंटरनेट की 4G खिदमात दस्तियाब हैं और जल्द ही 5G की भी शुरुआत हो जाएगी। आज हिंदुस्तान साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबों में भारत की विरासत मालामाल है। हमारे साइंसदानों ने इस सिलसिले में नए अंदाज की तहकीक की है। हमारी टेक्नोलॉजी की सनअत आलमी मसाइल को हल करने में पेश पेश है। हिंदुस्तान अब आलमी दर्जे की तालीम, सेहत, कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए आला तकनीक के हल तश्कील देने और इख्तियार करने के लिए तैयार है। आज़ादी का अमृतकाल हिंदुस्तान के साइंसी सफर में एक अहम मोड़ की निशानदेही करता है, जो उमदगी की परवरिश के लिए मुल्क के पुख्ता अज़्म की अलामत है। अलगर्ज खलाई मशीनों से लेकर गहरे समंदरों की तलाश तक, कौमी सुपर कंप्यूटिंग मिशन से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन और मिशन हाइड्रोजन तक, ड्रोन टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त, हिंदुस्तान तेज रफ्तारी से मुतअद्दद कसीर जहती अकदामात को आगे बढ़ा रहा है। ताहम अभी बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की के बावजूद मुल्क में फिरका परस्ती, तोहम परस्ती का मसला आज भी बरकरार नजर आता है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। बेहतर सियासत और दूर अंदेश पॉलिसियों से ही इन मसाइल को हल किया जा सकता है और अगर ये सब हुआ तो हिंदुस्तान न सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में मजीद बुलंदियों पर प्रवास करेगा, बल्कि मुल्क के पसमानदा और महरूम तबकों को भी पस्ती से बाहर निकाल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने माजी के चैलेंजों को बहुत खूबसूरती से हल किया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस तरक्की को मज़ीद आगे लेकर जाना होगा।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना बेदारी कायनात, एक मालूमाती टॉक जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में तफसील से ज़िक्र आया कि किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी पर असरात डाले। और अब सामेईन, वक्त हो चुका है नगमों के सफ़र पे रवाना होने का। जी हाँ दोस्तों, मेरी मुराद है प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जासे। तो हम आपको सुनाएंगे

प्यार भरे और दिलकश नगमे। लेकिन इन नगमों के बीच में हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है, क्या आज भी पड़ोसी पहले जैसे हैं? जी दोस्तों, किसी शायर ने कहा, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। कभी आपने सोचा है कि हमारा पड़ोसी आखिर होता क्या है? वो शख्स जिसके घर का दरवाज़ा हमारे घर के बिल्कुल साथ हो, या वो शख्स जिसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन सलाम या नमस्ते या ससिकाल करने का वक्त नहीं मिलता। एक ज़माना था जब पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होता था, वो घर के ख़ानदान का एक खामोश सा हिस्सा हुआ करता था। किसी घर में खुशी हो तो सबसे पहले पड़ोसी पहुंचता था, किसी के घर में गम हो तो सबसे पहले पड़ोसी कंधा देने आता था, और अगर घर में चीनी ख़त्म हो जाए तो भी सबसे पहले पड़ोसी ही याद आता था। बाजी ज़रा एक कप चीनी मिल जाएगी, ये सवाल होता था। और दिलचस्प बात यह है कि वो एक कप चीनी कभी कभी इतनी मोहब्बत से मिलती थी कि वापसी का कोई तकाजा ही नहीं होता था। फिर ज़माना बदला, उसके बाद क्या हुआ इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। लीजिए, समाप्त कीजिए।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं प्यार भरे दिलकश नगमे। अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म पाकीज़ा का था, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। और इस गीत पे मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आया, बड़ा मशहूर शेर है कि उजाले अपनी यादों की, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, वाकई यादें इंसान का पीछा करती हैं। खैर, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्या आज भी पड़ोसी पहले जैसे हैं। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब पड़ोस से चीनी मांगने के बजाय हम मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। और अगर पड़ोसी पूछ ले, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, तो जवाब आता है, बस ज़रा ज़रूरी काम है। दोस्तों, पुराने मोहल्ले की बात ही कुछ और थी। पुराने मोहल्ले में ज़िंदगी थोड़ी सुस्त थी, लेकिन रिश्ते बहुत अच्छे थे। किसी घर में शादी हो रही हो तो पूरा मोहल्ला जानता था कि घर में शादी है। उसी तरह से किसी घर में बच्चा पैदा हुआ तो खबर दरवाजे से पहले गली में पहुंच जाती थी। और किसी के घर में नई टीवी आई तो फिर समझ लीजिए कि मोहल्ले के बच्चों की शाम का प्रोग्राम तय हो गया। चलो आज फुलां के घर टीवी देखने चलते हैं। मुझे लगता है मेरी इन बातों को सुनकर आपके बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई होंगी, जब सब बच्चे फर्श पर बैठकर टीवी देखने का मज़ा लेते थे। लेकिन सामिन इकराम, अभी वक्त है एक और गीत से लुत्फ अंदोज़ होने का। तो लीजिए, समाप्त कीजिए ये खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं दिलकश और प्यार भरे नगमे। अभी आपने फिल्म अंदाज से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत सुना। दोस्तों, हम नगमों के बीच बीच में बात कर रहे हैं कि क्या आज भी पड़ोसी पहले जैसे हैं। तो सामीन, पुराने ज़माने में हर घर में टीवी नहीं होती थी, इसलिए अगर किसी एक घर में टीवी होती थी तो पूरा मोहल्ला वहीं मज़े करता था। आज सूरत हाल यह है, तकरीबन हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में इंटरनेट है, लेकिन कभी-कभी एक ही घर में रहने वाले चार लोग भी एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, जैसे खाना तैयार है, मैं आ रहा हूँ, और इस तरह दूसरे मैसेजेस जो भी वो करते हैं। और कभी-कभी तो माँ को भी बच्चे को बुलाने के लिए व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजना पड़ता है। तो क्या तरक्की के साथ तन्हाई हमारा मुकद्दर बनती जा रही है? ये सवाल तो जहन में आया होगा आपके भी कि हम तरक्की के साथ साथ तन्हा तो नहीं हो रहे हैं। हम मोबाइल स्क्रीन के ज़रिए एक ऐसी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं जो हमें आसपास की दुनिया से अलग कर देती है, और इस तरह हम भीड़ में भी तन्हा हो जाते हैं। हालांकि आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे, खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे, माँ तुझे हम अभी बूढ़ा नहीं होने देंगे।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाताजा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। और अभी जो गीत आपने सुना, आज मौसम बड़ा बेईमान है।

फिल्म लोफर से लिया गया था, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। दोस्तों, आज मौसम बड़ा बेईमान है, यह ऐसा नगमा था कि मुझे भी एक शेर याद आया कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, स्याही है, सफ़ेदी है, शफ़क़ है, अब्र बारा है। जी दोस्तों, बरसात का मौसम ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिस पे हम बात कर रहे थे। जी, हमारा आज का टॉपिक था, आपको याद दिला दूं कि क्या आज भी पड़ोसी पहले जैसे होते हैं या पहले जैसे हैं। तो दोस्तों, पड़ोसी पहले मददगार होते थे। पुराने वक्तों में अगर रात के वक्त किसी घर में तबीयत खराब हो जाए तो पड़ोसी फौरन मदद के लिए पहुंच जाते थे। किसी के पास गाड़ी है, हाँ ले जाओ, किसी के पास दवाई की जानकारी है, वो कहता था मैं चलता हूँ, किसी के पास डॉक्टर का नंबर है तो ये रहा। यानी मोहल्ला एक छोटे सा खानदान की तरह था। आज भी ऐसे पड़ोसी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग आज नहीं हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी ने फासले थोड़े बढ़ा दिए हैं। हमें अपने पड़ोसी का नाम शायद मालूम ना हो, लेकिन शायद उसके वाईफाई की स्पीड की जानकारी रहती है। और दोस्तों, फ्लैट सिस्टम और अपार्टमेंट ने तो इंसानों की दूरी और बढ़ा दी है। आजू बाजू फ्लैट है मगर एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, बस काम वाली और दूध वाले को सबकी जानकारी होती है, और वो सबको जानते भी हैं और शायद एक दूसरे की खबर भी पहुंचाते रहते हैं। तो आज के दौर के मुनासिबत से राहत इंदौरी ने क्या ही अच्छा शेर कहा है। तुझसे मिलने की तमन्ना भी बहुत है लेकिन, तुझसे मिलने की तमन्ना भी बहुत है लेकिन, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि क्या आज भी पड़ोसी पहले जैसे हैं। तो दोस्तों, पहले पड़ोसियों को एक दूसरे की खबर दरवाज़ा खोलकर मिलती थी, जबकि आज खबर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से मिल जाती है। पहले पड़ोसी पूछता था, भाई खैरियत है? आज फेसबुक पूछता है, व्हाट्स ऑन योर माइंड? और हम पड़ोसी को कुछ नहीं बताते, लेकिन पूरी दुनिया को बता देते हैं कि आज हमारा मूड ख़राब है। लेकिन क्या कसूरवार सिर्फ पड़ोसी हैं? शायद नहीं। हम सब की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है, दफ्तर, कारोबार, बच्चों की तालीम, ट्रैफिक, मोबाइल, सोशल मीडिया और न जाने कितनी जिम्मेदारियां। पहले लोग शाम को घर के बाहर बैठते थे, किसी के हाथ में अखबार होता था, किसी के हाथ में चाय का कप, बच्चे गली में खेल रहे होते थे और बड़े दुनिया भर की खबरें एक दूसरे से शेयर कर रहे होते थे। आज भी लोग शाम को बैठते हैं, लेकिन हर शख्स के हाथ में मोबाइल होता है। चार लोग एक जगह बैठे हैं, लेकिन गुफ्तगू चार अलग अलग दुनिया में चल रही है। लेकिन हम एक बार फिर चलते हैं नगमों की दुनिया में और सुनते हैं ये दिलकश गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं प्यार भरे गीत। और अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म शेरा रेशमा और शेरा से लिया गया था, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। तो दोस्तों, गीत सुरीले गाते जा में नगमों के बीच हम बात कर रहे हैं, क्या आज भी पड़ोसी पहले जैसे हैं, इस टॉपिक पे हमारी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, पड़ोसी सिर्फ दीवार की दूसरी तरफ रहने वाला शख्स नहीं, असल में अच्छा पड़ोसी वो है जो ज़रूरत के वक्त काम आए। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना घंटों बात हो, ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के घर रोज़ आना जाना हो, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो दिल में ये एहसास हो कि मेरे साथ वाले घर में एक इंसान ऐसा रहता है जिसे मैं जब चाहूँ आवाज़ दे सकता हूँ। यही पड़ोस की असल खूबसूरती है और शायद हमें भी अपनी तरफ से एक छोटी सी शुरुआत करनी चाहिए। कभी लिफ्ट में मिल जाएं तो सिर्फ मोबाइल देखने के बजाय हाय हेलो कर लें। कभी सामने वाला पड़ोसी भारी सामान उठा रहा हो तो एक लम्हे के लिए मदद कर दें। कभी उनके घर खुशी हो तो मुबारकबाद देने पहुँच जाएँ, और कभी उनके घर में खाने की खुशबू आए तो सामेईन बस खुशबू तक ही महदूद रहिए, क्योंकि आजकल पड़ोसी खाना कम और फूड डिलीवरी ज़्यादा मंगवा रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और हमारी गुफ्तगू तो जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

जिसे गाया था उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल ने। दोस्तों, नगमों के बीच में हम मुसलसल बात करते रहे और बहुत मज़ा आया, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हम किस तरह से हमारा वक्त गुजरा। नगमे और पड़ोसी के बारे में हमारी बातचीत चलती रही और बीच बीच में हम आपके नगमे भी सुनवाते रहे, तो बड़ा अच्छा रहा सामीन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आज के जो पड़ोस हैं वो क्या पहले की तरह हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए, और हमें बताना ना भूलिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। और इसी फिल्मी गीत के साथ फिल्मी गीत का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है, और अब बारी है प्याम शब की, तो लीजिए समाप्त कीजिए प्याम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब जैदी साहब की।

0: वक्त लफ्जों से बनाई ही हुई चादर जैसा, ओढ़ लेता हूं तो सब खौब हुनर लगता है। वक्त इंसान का सबसे कीमती सरमाया है। गुजरने वाला वक्त हमें अपने तजुर्बात से सिखाता है कि जो ख्वाब कभी नामुमकिन दिखाई देते थे, मुसलसिल मेहनत और सब्र के बाद वही हमारी जिंदगी का हुनर बन सकते हैं। इसीलिए मुश्किल वक्त से घबराना नहीं चाहिए, इसे तजुर्बा, तरबियत और अपनी शख्सियत की तामीर का जरिया बनाना चाहिए।
1: दोस्तों, इसी पैगाम के साथ नए रंग इख्तिताम पजीर होता है। अगली बज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और

सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय

0: एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से पीओजेके में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेकेजेएसी के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force, heads of states and union territories in New Delhi today, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said, government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi today met Sri Sri Vishwa Prasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adokshaja Matha, Udupi, along with other dignitaries in New Delhi. On the occasion of Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Teeth Swami continues to inspire countless people. He said the various initiatives taken under the run to run up to his birth

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. स्टूडियो में आज हमारे साथ श्रोताओं चर्चा करने के लिए विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: थैंक यू. वेलकम सुषमा.
2: थैंक यू.
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350. आरबीआई एब्जॉर्ब्स नियरली 72,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओवरनाइट variable rate reverse repo auction, estimates surplus liquidity in banking system to be over 4.9 lakh crore rupees, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक फिसला, निफ्टी 23,350 के नीचे बंद हुआ. रिजर्व बैंक ने ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 72,000 करोड़ रुपए अंतर्लीन किए. बैंकिंग प्रणाली अतिरिक्त नकदी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है. और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया. तो श्रोताओं, प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 330 अंक गिरकर 74,529 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 85 अंक लुढ़ककर 23,329 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.1% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.2% नीचे आया. इससे पहले बाजार सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मामूली बढ़त के साथ खुले थे. हालांकि कारोबार के पहले ही घंटे में उन्होंने अपनी बढ़त गंवा दी और बाद में दोनों सूचकांक फिसलकर कारोबार करने लगे. बाजार ने दिन के निचले स्तर से उबरने की कोशिश की.

0: लेकिन अंततः वे गिरावट के साथ बंद हुए।
1: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. The Nifty dropped 85 points to settle at 23,329. In the broader market of the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 Index dipped 0.1%, while the Nifty Small-Cap 100 Index declined 0.2%. Earlier, the markets opened with moderate gains supported by positive global cues. However, they surrendered their initial gains within the first hour of trading, with both indices subsequently moving lower. Although the markets tried to recover from the day's lows, but they ultimately ended in bearish territory.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक घाटे में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में बजाज फिनसर्व 1.5% से अधिक, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस में 1.5% तथा सनफार्मा में 1.3% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इटर्नल लगभग 2%, इंडिगो 1.5% से अधिक और टाइटन के शेयरों में 0.7% की वृद्धि हुई।
1: In sectoral indices on the BSE, 23 out of 28 sectors edged downward. Among the top losers, housing finance as well as focused IT lost 1%. Capital goods dropped 0.9% and IT fell 0.8%. In contrast, telecommunications climbed 1%, realty increased 0.8%, services rose 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,087 advanced and 215 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज 22 पैसे मजबूत होकर 95.59 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा, हमने देखा कि बाजार ने जो आज अपने कारोबार की शुरुआत की, सत्र की जो शुरुआत की, वो हरी झंडी के साथ की, लेकिन जब खत्म हुआ तो लाल झंडी थी। इस दरमियान क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे क्रमबद्ध तरीकों से जो क्यूज जिसे हम कहते हैं वो नजर आए इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, जिसने इस तरीके की ट्रैजेक्टरी बनाने में मदद की?
2: देखिए, ये चार दिन के बाद ये बेरिश ट्रेंड फिर से आ गया और एक चीज तो जरूर है, इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, ये भी है। और दूसरा ये है कि कुछ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त में उन्होंने पैसा डाल दिया था इंडियन मार्केट में, सितंबर में खासकर वो बाहर निकाल रहे हैं। और एक वजह ये है कि एक तो उनको वैल्यूएशंस थोड़ी हाई लग रही हैं और दूसरा वो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं यूएस में और रेट्स उनको वहां वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ वहां ज्यादा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये यहां पर जो ये जो माहौल आज का है वो इसी वजह से है। हालांकि क्रूड प्राइसेस नीचे आ रही हैं धीरे धीरे, फिर भी हमारे हमारे नजरिए में तो काफी हाई है, 98 डॉलर्स है, बिलो 100 डॉलर्स आ गई है।
0: क्षेत्रीय स्तर पे हमने बिकवाली देखी आईटी सेक्टर में।
2: हाँ, आईटी सेक्टर में अभी भी ये अगर आप देखें तो ये अभी भी ये एआई का जो असर है, ये जो डर लगा हुआ है कि हमारी आईटी कंपनीज बाहर के जो बड़े बड़े एआई जायंट्स के साथ कम्पीट ना कर पाए, वो जरूर ये आईटी क्षेत्र के ऊपर हावी है और ये कई दिनों से है, ये आज की बात नहीं है।
1: सुषमा, डिड एफआईआईज एंड डीआईआईज टुडे शो एनी क्लियर फ्लो पैटर्न, you know, that amplified the late session weakness?
2: Well, I think it's basically you are seeing this clear thing even when the market was going up, that FIIs were pulling out and DIIs were, you know, still investing
0: pushing
2: in the market. And this, of course, is sometimes, you know, analysts are analyzing this and puzzling over that. The fact is that FIIs have far more, you know, they can pick and choose in markets abroad. They feel valuations are somewhat higher here, and of course you are getting better rates, yields, bond yields have gone up. As far as Indian investors are concerned, they are looking at the long term, and you know, if you know, these SIPs are going up, mutual funds, the numbers are going up day by day, and they are putting their faith in the long term growth story of this country. So I think there's a very different perspective.

0: perspective of domestic retail investors as well as the foreign institutional investors. Completely different outlook.
1: So how much was today's move F&O expiry driven versus fundamental risk off?
0: I would say it's largely expiry driven today because the you know, on the geopolitical front, you could see that, you know, the trends abroad have been better because there have been reports that probably the Strait of Hormuz may open in 7 days. Now, we don't know, but these reports have come in. And therefore, there was a sort of a feeling of cheer. Crude oil prices have come down below the psychological $100 mark. But despite this having happened, I think it is largely the expiry issue which has caused today's fall in the market.
2: Sushma, निवेश की क्या नीति होनी चाहिए इस संदर्भ में जब हम देखते हैं कि geopolitical scenario जो वैश्विक परिदृश्य इतना अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो एक आम निवेशक क्या नीति बनाए अभी अगर वो बाजार में आना चाहता है तो?
0: देखिए जो आम निवेशक है उसको तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा क्योंकि अभी इस हाल में जो geopolitical tensions हैं उनकी वजह से मार्केट में बहुत ही volatility है. कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है. क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो मार्केट गिर जाता है. क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जो जा रही हैं उनका असर है क्योंकि इंडिया एक देश है जिसमें हम ज्यादातर अपने जो तेल की जरूरतें हम बाहर से लेते हैं. तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो अप्रैल के बाद जब से ये वॉर शुरू हुई है तो उसका भी बिल बहुत बढ़ गया है. तो ये जो निवेशक है उसको इस चीज से आगे देखना पड़ेगा, इसको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा. ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर आप अपने जो बाइंग एंड सेलिंग की जो का निर्भर इसके ऊपर शॉर्ट टर्म पे ना करें.
1: If we were to look at the sectoral watch, how vulnerable are the rate-sensitive sectors like the realty, autos, and NBFCs if bond yields stay elevated?
0: They are, of course, going to be affected. But if you see, sectors, for instance, like you mentioned realty is doing well, it has rebounded. Auto is doing very well, and I don't think it's going to have much of an impact on auto because auto is driven largely by domestic consumption, although all exports have gone up a great deal. So I think these are two areas which are not likely to be affected as much by the global bond scenario.
1: So is banking and the energy, these two sectors, now the key anchors for stability?
0: Yes.
1: Or do they carry event risk with global rates and crude, whatever is happening?
0: Banking, of course, I would say certainly is an anchor, but energy, has to face volatility. But at the same time, if you see the domestic oil producing companies, ONGC and Oil India, and even the oil marketing companies, they get the benefit of refining margins with high rates. So it's not that they are making losses throughout because our pump prices are rather low and they are suffering. OMCs, oil marketing companies, are suffering under recoveries. At the same time, they are making money on what is known as the refining margins.
2: जो एक उभरता बाजार है जैसा कि एक हमारा हम अगर अपने देश की ही बात करें ऐसे परिदृश्य में हम कहाँ खड़े पाते हैं अपने आप को कि जहां पर हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल तनाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है और सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है. मार्केट्स अपने आप में एक फैक्टर है ये देखने का कि ये सूचकांक है अपने आप में ये देखने का कि किस तरफ हमारी ग्रोथ स्टोरी जा रही है. ऐसे में हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं आपकी राय में?
0: ये आप मार्केट्स की बात कर रहे हैं
2: जी.
0: हाँ, तो देखिए मार्केट्स जरूरी नहीं दिखाती है कि हमारी जो इकोनॉमी है कहाँ जा रही है. वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर निर्भर है और वो जैसे आपने खुद ही कहा सेंटिमेंट ड्रिवन होती है. तो अभी हाल ही में हमारा जो पहला क्वार्टर इस साल का 2026-27 में 7.8% ग्रोथ हुआ है और ये भी उस वक्त जबकि ये यूएस ईरान का वॉर शुरू हुआ और हमें लगा कि शायद इतना अच्छा नहीं होगा. हाँ, और आगे वाले दिनों में हमारे बहुत चुनौतियां हैं हमारी इकोनॉमी के लिए क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं. अभी तेल की जो बात अभी हमने की है, तेल का जो کے دام بڑھ رہے ہیں, حالانکہ $100 سے کم ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی

0: at $98 and 34 cents per barrel in intraday trade at the time of writing this report. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% lower at $93 and 30 cents per barrel in intraday trade.
1: Sushma, तेल कच्चे तेल के दाम इस बीच हमने आज देखा कि गिरे हैं लेकिन हाँ थोड़े से गिरे हैं लेकिन ओवरऑल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि उसके भाव पर आपकी क्या राय है
2: अभी देखिए जब तक ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है यूएस और ईरान के बीच में जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है जब तक दूसरा स्ट्रेट जो है बाब अल मंडाब में अटैक्स हो रहे हैं वो यमन के हूती ग्रुप से तब तक ये दाम तो बढ़ते ही जाएंगे और ये जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता यूएस और ईरान और इसराइल के बीच में तब तक मेरे ख्याल हमें यही ऊंचे ऊंचे स्तर पर तेल के दाम देखने को मिलेंगे
0: Hopefully should happen at the UN.
2: We should hope so because it's not just of course in India's case we know that we require a lot of crude and therefore it's very expensive but it is in everybody's interests even the US is feeling the pinch of higher gasoline prices at the pump Iran is feeling the pinch because they have they're not able to get their crude out in the market and they are facing economic problem of resources so therefore everybody wants this war to end let's hope something happens
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.8% की गिरावट के साथ 1,52,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था जबकि चांदी 0.9% लुढ़ककर 2,32,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब चलते हैं आर्थिक सुर्खियों की तरफ
0: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स below 23,350. RBI absorbs nearly 72,000 crore rupees from banking system through overnight variable rate, reverse repo auction and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए लुत्फ उठाते हैं गीत मेरे मनमीत का। पहला गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से आवाजें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत। अगला गीत फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अभी आपने फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इससे पहले आपने फिल्म दूल्हा दुल्हन का गीत मुकेश की आवाज में सुना। इसी गीत के साथ ही अब गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। जुड़ते हैं समाचारों से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म जूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया कई गंभीर तनाव और चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में आना उनके लिए सम्मान की बात है और अमेरिका काफी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, अवैध प्रवासन रोकने और

0: पूरी तरह खोलने के समझौते में देरी का आरोप लगाया। भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। बिहार के जमुई जिले में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक प्रीति वर्मा को पत्र लिखकर 7 दिन के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित हैं। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads of states and union territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi yesterday met Sri Sri Vishwa Prasanna Tirth Swamiji of Sri Pejavara Adokshaja Matha, Udupi, along with other dignitaries in New Delhi. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishwesha Tirth Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishwesha Tirth Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideals. At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue, reasserting its continental dominance, clinched a second successive gold medal at the sporting event by thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishan. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

गीत में मोहब्बत की एक बेहद सादगी भरी गुजारिश है। न कोई शिकवा, न कोई जिद, बस अपने महबूब से इतना सा कहना है कि दिल ने प्यार मांगा है तो उसे ठुकराइए नहीं। कॉलेज गर्ल फिल्म का ये गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। शिव कुमार सरोज ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

रिश्तों की खूबसूरती शायद इसी भरोसे में है कि हालात चाहे जैसे हों, साथ कभी न छूटे। इसी एहसास को आवाज दी फिल्म जुर्म के इस गाने में। इसे गाया साधना सरगम ने और कुमार सानू ने।

कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस आंखें मिलती हैं और दिल की सारी बातें कह दी जाती हैं। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है जिसे नापा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। होटल फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज में। उषा खन्ना ने संगीत दिया और इसे लिखा इंदिवर ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 48 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अपनी गहराई में उतरता है तो हवाओं में भी जैसे कोई मीठी सी खुशबू घुलने लगती है। दिल बेखबर सा बहकने लगता है और रात की तन्हाई में हर एहसास कुछ और भी हसीन हो जाता है। उत्सव फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। वसंत देव ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अपने घर अपने पिया के घर की रानी होने का एहसास ही कुछ और है। इंतजार में सजी आंखें, दिल में मिलने की खुशी और हर आहट पर जैसे ठहरती हुई धड़कन। पिया का घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो जिंदगी की हर खुशी उसी एक शख्स से जुड़ जाती है। उसकी मौजूदगी में हर पल खूबसूरत लगता है और उसकी चाहत ही जैसे जीने की वजह बन जाती है। अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

स्वामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 34 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक

वक्त हुआ है 1:10, वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

दिल की बातों को कहने के लिए हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती, मगर कभी कभी दिल चाहता है कि सामने वाला अपने मन की बात खुलकर कह दे। कोई झिझक नहीं, कोई पर्दा नहीं, बस दिल है, दिल में जो भी बात है वही सच सच कह दे। बादल फिल्म का आपने गाना सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

जब इंतजार हद से बढ़ जाए तो दिल की धड़कनें भी जैसे एक ही पुकार बन जाती है, लौट आओ, अब और इंतजार नहीं होता। तन्हाई में डूबा दिल बस अपने हमदम की आहट का इंतजार करता है। मधुमती फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

जब दो दिलों की धड़कनें एक सुर में मिल जाएं, तो मोहब्बत अपने आप एक खूबसूरत गीत बन जाती है। तुम्हारे सुर और मेरे सुर का ये मिलन ही तो रचेगा प्रेम की वो मधुर धुन, जिसे दिल बरसों तक गुनगुनाता रहेगा। गूंज उठी शहनाई से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में।

अपने कान का बाला ढूंढती हुई इस चंचल धुन में लोक संगीत की मिठास भी है और प्रेम की खूबसूरत छुअन भी। आपने सुना, ये गीत सुना गंगा जमुना फिल्म से। लता मंगेशकर ने इसे गाया और इसे लिखा शकील बदायूनी ने, संगीत दिया नौशाद ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 48 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: का मौसम
1: आंखों से बीने का है। सुनो जी कहना,
0: क्यों माने,
1: संभल के चलना,
0: क्या जाने
1: यही तो मौसम।
2: यही तो मौसम है कुछ पल बेफिक्र होकर जीने का, दिल की सुनने का, मुस्कुराने का और जिंदगी की हर छोटी सी खुशी को खुलकर महसूस करने का। कल हमारा है फिल्म से आपने गाना सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

0: के दा।
1: जब सुरों की मीठी तान छेड़ती है दिल के तार, तो मन भी कहाँ ठहरता है, बस झूम उठता है संगीत की लय पर। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने गाना सुना, रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

होती। यहाँ हर कदम पर दिल को संभाल कर चलना पड़ता है। कभी प्यार मुस्कान देता है तो कभी वही प्यार आंखों में नमी छोड़ जाता है। उड़न खटोला फिल्म से आपने गाना सुना। रफी की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

कभी कभी जिंदगी हमें अपनों से दूर तो कर देती है, मगर दिल की डोर को तोड़ नहीं पाती। बिछड़ने की इसी कसक और यादों की इसी मिठास को अपने सुरों में समेटा ये गीत आपने सुना, जिसमें एक दिल दूसरे दिल से बस इतनी सी गुजारिश करता है कि जहां भी रहो हमें अपनी यादों से कभी दूर मत करना। जबक फिल्म का आपने गीत सुना। रफी और लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम धवन ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

कुछ तलाश ऐसी होती हैं जिनका कोई पता नहीं होता। बस दिल जानता है कि किसी की कमी है और वही कमी हर पल उसे किसी अनजानी मंजिल की ओर ले जाती है, जैसे भटके हुए मुसाफिर अपनी मंजिल तलाशते हैं। यास्मीन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

शाम की खामोशी जब धीरे धीरे रात में ढलने लगती है तो तन्हाई और भी गहरी महसूस होती है। ऐसे में किसी अपने की याद, उसकी बातें और उसका गम दिल के बेहद करीब आ जाता है। आह फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

अमर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। वक्त हुआ है 1:55 और 44 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। ये समझौता श्री ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुआ है। समझौते के तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में ही रहेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने व्यापार संपर्क मंच का भी जिक्र किया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां और पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी का आज मुंबई में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यशराज फिल्म्स ने परिवार की ओर से निजता की अपील की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। मौसम विभाग

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

मोहब्बत का ये रोग ऐसा रोग होता है जिसका इलाज किसी दवा में नहीं, बस महबूब की एक झलक से होता है। दिल जब प्रेम रोगी हो जाए तो फिर वैद्य भी क्या करे। प्रेम रोग फिल्म का ये गाना आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जिंदगी यूं ही छोटी छोटी खुशियों और खूबसूरत पलों से मिलकर बनती है, तो क्यों ना आज की इस रात में कुछ पल मोहब्बत के नाम कर दिए जाएं, जहां शिकवे ना हो, कोई शिकायत ना हो, बस साथ हो, मुस्कुराहट हो और दिल में प्यार की एक मीठी सी धुन हो। क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 13 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कभी कभी जिंदगी की राहें भी किसी सुहानी डगर की तरह होती हैं। कहां ले जाएंगी ये पता नहीं होता, बस कदम बढ़ते जाते हैं। नदिया के पार का ये गीत भी ऐसी ही मासूमियत और गांव की मिट्टी की खुशबू से भरी राहों का एहसास कराता है। ये गीत आपने सुना हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए प्यार की गहराइयों को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। बस इतना एहसास काफी है कि उस शख्स की मौजूदगी जिंदगी को मुकम्मल बनाती है और उसकी गैर मौजूदगी एक खालीपन छोड़ जाती है। कुदरत फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

अहले दिल की भी अपनी एक खामोश दुनिया होती है। ये लोग मोहब्बत को सिर्फ पाना नहीं, निभाना भी जानते हैं। दिल में कितना ही दर्द क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कान सजाए रखते हैं और अपने गम को सीने में छुपा लेते हैं। शायद यही तो सच्ची मोहब्बत की पहचान है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

साथ साथ फिल्म से आपने ये गीत सुना चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। वक्त हुआ है 2:51 और ठीक 49 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार समाधान तलाशना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी एराटोस्थनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य, अनेक परछाइयां, एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2020.

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास है जिसकी महक से आप सारा दिन सरोबार रहते हैं। सुन ए बहारे हुस्न, तुझे दिल का हाल क्या बताएं? सुन ए बहारे हुस्न, तुझे दिल का हाल क्या बताएं? तेरी हर एक अदा पर हम तो फिदा हो जाएं। ये रात, ये हवा और ये संगीत का समा, बस तेरा नाम ही अब हमारी धड़कन की सदा बन जाए।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म नाइट इन लंदन से अभी आपने गीत सुना। हवाओं में बिखरी है जो खुशबू किसी अपने की, हवाओं में बिखरी है जो खुशबू किसी अपने की, ये उसी प्यार का जादू है, उसी की कसक है। सुनो तो जरा इन फिजाओं की सरगोशी को, ये दास्ताएं मोहब्बत है किसी अपने की।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रिश्ते जमीन पर बनते हैं, पर सच तो ये है कि असली रिश्ता वही है जहां दिल से दिल का तार जुड़ जाए, जहां लफ्जों की जरूरत ना हो, बस खामोशी ही सब कुछ कह दे। आइए सुनते हैं चरित्रहीन फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना।

लता मंगेशकर महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में फिल्म संगम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी के सफर में कब कौन अपना बन जाए ये वक्त भी हमें नहीं बताता, बस एक हसीन पल होता है और बात दिल तक पहुंच जाती है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म शक्ति से ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ना तुझसे ना मुझसे, ओए ना मुझसे ना तुझसे,

शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अशांति से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार में कसमें वादे होना लाजमी है और कसमें वादे देकर ऐसे लगता है जैसे एक अटूट विश्वास का रिश्ता कायम हो गया है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कसमें वादे से ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म राज से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना से।

दोस्तों अब हम भी चलते हैं और हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी, सुबह 6 बजे तक मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकतानगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितेन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार्य समाधान तलाशना है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका सहित 8 मित्र देश अपने हवाई संसाधनों के साथ अभ्यास में भाग लेंगे। वहीं 32 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी एराथोस्तनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य, अनेक परछाइयां, एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: దిస్ ఇస్ ఆకాశవాణి, ది న్యూస్ రెడ్ బై తన్వి గుప్తా. President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
1: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे. सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती. भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है. उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी

सुबह के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी हमें हर मोड़ पर आजमाती है, पर हम

हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है और अपनी मंजिल को पाना होता है। जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होगा ना दोस्तों, तो जिंदगी आपको आजमाना भी छोड़ देगी।

साधना सरगम की आवाज में फिल्म जिंदगी तू ना आसमां से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, जीवन से कभी हार नहीं माननी है और हर मुश्किलों में आगे बढ़ते जाना है, बस ये बात अपने मन में हमेशा रखिए। आइए सुनते हैं दूर के राही फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, जिंदगी में हम कितना कुछ देख लेते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी मिलन, कभी विरह, कभी प्रेम तो कभी नफरत, और कभी आशा और कभी निराशा। आइए ऐसा ही कुछ गीत सुनते हैं। जिंदगी आ रहा हूं मैं, मशाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सुबह के 4:28 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म शर्मीली से।

दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ अस्थाई है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका आनंद लें, क्योंकि वह हमेशा रहने वाला नहीं है। और यदि कुछ बुरा चल रहा है तो भी चिंता ना करें, क्योंकि यह भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर, कमलेश अवस्थी, अनवर की आवाज में नसीब फिल्म से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सच है क्या, सब सच।
1: मुकेश की आवाज में फिल्म जागते रहो से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हम किसी के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट ला दें तो समझो कि हमारा आज का दिन सफल हो गया। और अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो ऐसा समझिए कि आपके कर्मों में एक अच्छा कर्म बीच में जुड़ गया है, उस लिस्ट में आपका एक अच्छा कर्म जुड़ गया है। आइए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, ये तो आपको पता लग ही गया कि कैसे आप अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं, पर जिंदगी में अगर आपने कुछ और चाहे सीखा हो या ना हो, पर प्यार की भाषा बोलना तो सीख ही लीजिए। आइए सुनते हैं फूल और पत्थर फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

छोटी बहन फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाज़ में। और इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वो वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित

0: प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज एंड एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat today. During the ceremony, the President will confer degrees on more than 12,600 students. She will also award gold medals to students for their academic achievements in undergraduate and postgraduate programs. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, she will also inaugurate the Spiritual Awakening for World Renewal Project and virtually launched the Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. The President is on a three-day visit to Gujarat. Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity in at Ekta Nagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations." Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country.